FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

कोई है जो आवाज देता है, कोई है जो हर दिल में रहता है, कोई है जो आसमां से पानी बरसाता है, कोई तुम्हें जो अंधेरों से उजाला करता है, कोई है

सुबह जब आ जाती है एक खुशबू सी फैल जाती है, परिंदे चहचहाते हैं, प्यार भरे गीतों से जग को फिर जगाते हैं, हर तरफ से एक ही सदा आती है और हमको ये समझाती है कोई है जो आवाज दे।

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Shifa wahan se shuru hoti hai jahan kudrat muskurati hai. Schwabe Single Remedies. कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 24/7/365

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: 100 FM.
0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
2: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
3: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: हाई ब्लड प्रेशर से आगाही, सेहतमंद माशरे की बुनियाद, वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक। 18 से 24 मई के दरमियान सुनिए मालूमती प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान पर, एडको ग्रुप और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावुन से।
2: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
3: Us on facebook.com/FM247365.

0: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आजय सुमिया। और कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे लिसनर्स? ठीक ठाक हैं? और मुझे मिस किया किसी ने? मैंने तो बहुत मिस किया अपने लिसनर्स को। मुझे भी आदत हो गई है सुबह सुबह एक टाइम पे बोलने की, और मेरे घर वालों को नहीं आए। एनीवेज, तो आई होप कि आपकी मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग अच्छी गुजरी होगी और आप बहुत अच्छे मूड में होंगे, जो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इतनी शदीद धूप निकली हुई है और न जाने जो स्कूल अभी तक चल रहे हैं। क्यों स्कूल चल रहे हैं? मतलब कुछ स्कूलों की छुट्टियां भी हो गई है मगर कुछ स्कूल अभी तक चल रहे हैं। और उन स्कूल वालों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एक आपने हफ्ते में गर्मी में तकलीफ देने की क्या जरूरत है इतनी धूप के अंदर? बेचारों ने, बच्चों ने क्या कर लेना है? आप लोग अपनी जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि हमने फीस ली हुई है, वो जस्टिफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि आगे जून जुलाई की भी आप लोग फीसें लेंगे, है ना? और उस पर कहते हैं कि जी वो भी लेंगे फीस, कौन? वैन वाले। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बेचारे माँ बाप के बारे में कोई नहीं सोचता कि वो क्या करेंगे, मतलब वो किस बात की फीसें देते रहेंगे। हाँ, सबके हालात खराब है, स्कूल वाले टीचर्स के माँ बाप ने क्या बिगाड़ा है। खैर, ये तो जुल्म व सितम सारी है और कराची के लोग एज यूजुअल कभी भी इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। खैर, आप लोग के मैसेजेस मेरे पास आना शुरू हो चुके हैं। एनजी कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ओ माय गॉड, एनजी के बहुत सारे मैसेज ही कहां गायब थी। कदर खो देता है रोज का आना जाना, कभी कभी कहीं जाना भी चाहिए। खैर, हम अपने शो का आगाज हमेशा करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ, और आज हम पढ़ रहे हैं सूरह बरद का तर्जुमा। आगे पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे शहर की कसम जबकि तुम उस शहर में तशरीफ फरमा हो, और बाप की कसम और उसकी औलाद की। यकीनन बेशक हमने आदमी को मुशक्कत में रहता पैदा किया, क्या आदमी यह समझता है कि हरगिज इस पर कोई कुदरत नहीं पाएगा? कहता है कि मैंने ढेरों माल खत्म कर दिया, क्या आदमी यह समझता है कि उसे किसी ने ना देखा? अब सुन रहे थे सूरह बलद का तर्जुमा, और जब भी कुरान शरीफ पढ़े तर्जुमे के साथ पढ़े। बहुत मुबारक दिन है, ये जो एक अशरा है और इसमें लोग जो नेक लोग जिनको बड़ी हिदायत वाले होते हैं, रोजे भी रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इबादत करने की, और ऐसी इबादत करने की जो अल्लाह ताला के नजदीक मकबूल हो, राइट? और बच्चे जो अभी तक स्कूल जा रहे हैं, बच्चा पाजी मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं बच्चों, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अब टाइम रह गया है कम, वरना मैं सबके नाम लेती तो मैं अब आप लोगों के लिए गाना लगा देती हूँ। गाना है या ट्रैक है, जलेबी कहा है, आइए सुनते हैं।
1: अरे जलेबी, ये तो मजा हो गया, कोई और दुआ मांग लेता। ओ बेबी जलेबी,
2: जलेबी जलेबी जलेबी, किधर गई जलेबी? यही रखी थी मैंने, लाल बेग तुमने यहाँ जलेबी रखी देखी? यही रखी हुई थी लाल बेग, तुमने बिल्कुल नहीं देखी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे लाल बेग? तुम कुछ कुछ बोलो ना, तुमने हाथ मुंह पे क्यों रखा हुआ? क्या मतलब है? सही, मुंह पे से हाथ उठाओ, मुंह पे से हाथ उठाओ। तुमने दूसरा हाथ रख लिया है, मुंह पे से हाथ हटाओ, हटाओ मुंह पे से हाथ हटाओ, मुंह खोलो। खत्म हो गई, खा गया।
1: कितने अजीम शख्स हैं, अजीम तरीन अजमत का केटू है आप। आपने अपनी इकलौती जलेबी मुझ नाचीज को खाने दी, मुझ नाचीज को। इस मतलबी दुनिया में कौन शेयर करता है? मगर आपने अपनी ब्यूटीफुल जलेबी मेरी नजर कर दी। ये वही बंदा कर सकता है जो आपकी तरह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हो।
2: ब्यूटीफुल
1: हुसन का केटू।
3: It's 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition, aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath, full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
5: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
6: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
5: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
7: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
4: ہیلو گیس واٹ ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاورڈ سیٹ الوئے رمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل اور پرائز صرف 64,49,000 پری بکنگ از اوپن ناؤ سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں
5: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.

गुड मॉर्निंग दोस्तों, और क्या हालचाल और कैसे मिजाज हैं, कैसे आप गर्मी इंजॉय कर रहे हैं। मैं तो खैर शहर से बाहर गई हुई थी, और टेंशन ना लें, मैं पेरिस नहीं गई हुई थी, मैं इंटीरियर सिंध ही गई हुई थी, वहां पे और भी गर्मी है, लेकिन वहां पे लोग मेहमान नवाज ज्यादा हैं, ज्यादा ख्याल करते हैं, और मेहमान बनने का मुझे बहुत ही ज्यादा शौक है। हर जगह बस मुझे मेहमान बना दो, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू बी अ मेहमान। एनीवेज, तो हम अभी वक्त हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि आज का हमारा अजीमोशान टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज का अजीमोशान टॉपिक ये है कि एक दफा मैंने टॉपिक रखा था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग आपकी नजरों से गिर जाते हैं, और आज का हमारा टॉपिक ये है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग आपकी नजरों में और भी काबिल एहतराम हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मेहमान नवाजी है, कोई आपकी मेहमान नवाजी करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर कोई आपको खाना खिलाए और चाय पिलाए। ओहो, मेरा पक्का दोस्त वही इंसान होता है जो मुझे चाय पिलाए और पानी भी। एनीवेज, तो खैर आप लोग मुझे बताएं, हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या एट आरजे समिया इंस्टाग्राम पे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को आपकी नजर में मोहतरम बनाते हैं। इकबाल हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इसके अलावा जब मैं गई होती हूं तो मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, जिसके अंदर नसरीन पटेल जी जो है वो बड़े प्यारे मैसेज करती हैं। इसके अलावा आमिर जफर सिद्दीकी साहब के भी मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे। कुछ लोग होते हैं साइलेंट लिसनर्स होते हैं, वो गाड़ी में सुन रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, या वो गाड़ी मतलब जाहिर है वो सुन रहे हैं तो वो गाड़ी के अंदर से मुझे मैसेज नहीं कर पाते, लेकिन जब मैं नहीं होती हूं तो वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि आप कहां चले गए। तो ऐसे भी हैं लिसनर्स, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो खैर हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का, और ये जानने का कि आप जो हैं वो मतलब लिटरली क्या कर रहे हैं, आप जो है वो मतलब आपकी नजर में कौन सी चीजें हैं जो लोगों को काबिल एहतराम बनाती हैं आपकी नजर में। तो हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का। बहुत सारी चीजें हैं, कंजूसी जिस तरीके से लोगों को आपकी नजरों से गिरा देती है, इस तरह से जेनरोसिटी लोगों की इज्जत बढ़ा देती है। जेनरोसिटी ना सिर्फ पैसे खर्च करने में, बल्कि जेनरोसिटी किसी को माफ करने में भी, कि कोई कितने खुले दिल से आपकी गलतियों को माफ कर देता है। इसी तरह के बॉसेस हमें चाहिए होते हैं कि जो आप अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो पूरी जहां को नहीं बता दें। कुछ होते हैं ऐसे बॉसेस के अगर आपने मतलब मैं जानती हूं ऐसे लोगों को, फिर अच्छा फिर उस तरह की हरकतें कर रहे होते थे और फिर कहते थे कि यार मैं रिजाइन क्यों कर रही हूं। ओ हेलो, इतना दुख आप, कोई बंदा ऐसे रिजाइन नहीं करता, मतलब कोई पागल नहीं है कि इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है फिर वो फटाफट मेरी जैसी लड़की, और मेरे साथ भी बड़े इश्यूज हैं, मुझे बहुत ज्यादा एहतराम की जरूरत होती है अपने इर्द गिर्द, एहतराम और काबिल एहतराम लोग भी चाहिए होते हैं। आई कैन नॉट वर्क विद समबडी या वर्क फॉर समबडी आई फील जिसकी मैं इज्जत ना करती हूं दिल से, और मेरे साथ मेरे ख्याल से मेरा बहुत मुश्किल होगा ऐसे लोगों के साथ रहना इर्द गिर्द, भले वो मेरे रिश्ते में हो या फिर मतलब बॉस हो, कोलीग्स हो जिनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट नहीं करती, या फिर वो मेरे दिल से उतर गए हैं तो वो उनके साथ रहना फिर ज्यादा टाइम गुजारना मुश्किल होता है। तो खैर पूछो, बड़े प्रोफेशनल होते हैं ना, कह रहे हो कि यार बस मतलब पैसे आने दे, दिन गुजरने दे, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट क्या है यार, छोड़ो यार, मतलब बॉसेस तो हर जगह ही ऐसे होते हैं। तो खैर ये हमारी बातें हैं, आपकी क्या बातें हैं मैसेज करें। एक तरीका ये भी है मैसेज करने का कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, और उसे भेज देंगे 3636 पर, या आज इस मियां के फेसबुक पेज पे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं गाना, जो खवातीन बता रही है कि भाई तुमने अगर मेरे दिल में जगह बनानी है तो तुम्हें क्या करना होगा, आइए सुनते हैं।

0: वाह भाई, गाय बकरे सब बिक गए, कैश रख लिया ना इबादत से?
1: कैश अब जेब में नहीं, बराए राज बैंक अकाउंट में पेमेंट लेता हूँ सिर्फ रात से, यही है कैश की पक्की हिफाजत।
2: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराहे रास्त।
3: This program is brought to you by
4: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
3: and
5: Har Remittance par shandar inamat jeetne ka mauka paave.
3: Bank Al Habib, rishta bharose ka.
6: And Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
3: And
7: agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
3: And
8: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
9: Us on facebook.com/fm247365.

0: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय सुमी। आज हम बात कर रहे हैं कि आप किन लोगों की आप रिस्पेक्ट करते हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपकी नजर में लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ा देती हैं। और ऐसा अक्सर ये भी होता है कि रिस्पेक्ट जो है वो कम भी हो जाती है, ये भी बात ऐसी बात नहीं है। तो खैर आप लोग हमें मैसेज करें और हमें मैसेज कर सकते हैं आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या आरजे समिया इंस्टाग्राम पे। एक और तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें कि HI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर। इंतजार है आप लोगों के मैसेजेस का और अभी हम आपके लिए प्ले करते हैं माइकल जैक्सन की आवाज में ये ट्रैक।
1: The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: सामने वालों का बकरा भी आ गया। बाबा चले ना मंडी।
1: अभी चलते हैं।
2: पैसे रख लिए?
1: किस लिए? अब तो मंडी में भी पेमेंट होती है बराहे रास्त।
3: इस बकरीद पर कैश ले जाने के झंझट से बचें और रास्ते से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पैसे ट्रांसफर करें बिल्कुल फ्री। तो कुर्बानी के लिए पेमेंट हाथ के हाथ बराहे रास्त।
4: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
5: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease. Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
6: This program is brought to you by
7: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
6: and Har Remittance par shandar inamat jeetne ka mauka paaye.
8: Bank Al Habib, Rishta भरोसे का।
9: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
6: एंड
10: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
6: एंड
11: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
12: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
13: Let's celebrate
14: 31 years of memory. Milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आजय समी। आज हम बात कर रहे हैं कि आप किसकी ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, और हम लोग आप लोगों के मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे हैं और आप लोग मुझे बता रहे हैं कि कौन सी चीजें जो है वो मतलब कि आपको लोगों की नजर में मोहतरम बनाती हैं। एक चीज जो मुझे लोगों के बारे में बहुत इम्प्रेस भी करती है और अगर वो चीज ये नहीं करते तो बहुत जल्दी नजरों से गिर भी जाते हैं, वो है ख्वातीन की रिस्पेक्ट। अगर एक दफा भी मैं किसी की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और अच्छा लगता हूँ मुझे इंसान है कि अगर मैं कभी भी ये देखूंगी कि वो किसी भी सिन्फ़ नाज़ो के किसी भी फीमेल से, भले वो उस उम्र में बड़ी हैं छोटी हैं साथ काम करती हैं, और अगर वो बहुत रूड रवैया बिहेव उनसे करते हैं, बुरी तरीके से डांट देते हैं या उनके पीछे बहुत अजीब तरीके से उनके बारे में बात करते हैं ख्वातीन के बारे में भले वो कोई भी हो, तो वो आई थिंक दैट इज़ लाइक फॉर मी इट इज़ लाइक इंस्टेंट लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। आप जो है वो रिस्पेक्ट आप जो है वो कर सकते हैं। सनी का मैसेज आया मेरे पास। सनी आपने पहली दफा मुझे मैसेज किया है, बंदा कोई सलाम कोई दुआ कोई तरीके से बात कर लेता है, और दूसरी बात ये भी है कि हम ट्रैक्स से ज्यादा हमारा जो फोकस होता है वो टॉपिक पे होता है कि आप टॉपिक जो है वो मतलब टॉपिक पे आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्स आप खुद भी कहीं भी किसी भी जगह पे सुन ही सकते हैं, राइट। तो आज हम ये बात करें। इसके अलावा मुझे जो है ना, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और जिनको फजर की नमाज मिल जाती है, सुबह तहज्जुद की नमाज मिल जाती है, वो मेरे लिए बहुत काबिले एहतराम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नमाज हम पढ़ लेते हैं, नमाज कुछ तो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, खैर नमाजियों की इज्जत करना, आई डोंट नो, मुझे इट शुड नॉट बी जजमेंटल क्योंकि रिलीजन आपका अपना मामला होता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड नमाजी लोगों की रिस्पेक्ट होती है, लेकिन नमाज वो अपने लिए पढ़ते हैं लेकिन बंदा कहते हैं यार बड़ा नमाजी आदमी है, मतलब उसकी ऐसी रिस्पेक्ट हो जाती है। अल्लाह का नाम लेने वालों की रिस्पेक्ट तो होती है, मगर जो फजर की नमाज में उठ जाता है ना, जिसको फजर की नमाज मिल जाती है, और ये दुनिया की मसरूफियत दुनिया के काम धाम उनको फजर की नमाज पढ़ने से नहीं रोक पाते, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। इसके साथ साथ जो अपने नौकरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं कि नौकर बोले कि यार मैंने इस बंदे को छोड़ के नहीं जाना, ये मुझसे बड़े प्यार से बात करते हैं। जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं पैसा तो उनको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन अक्सर वो जहां उनका दिल लगता है आसपास का माहौल अच्छा है उनका ख्याल रखा जाता है इज्जत से बात की जाती है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं कभी एक ड्रामा देखी थी डॉक्टर बहू, और उसमें जो हीरोइन है कुबरा खान, वो इतने अच्छे तरीके से अपनी वो एक नौकरानी जो होती है वो कबाब तली होती है, वो कहती है मैंने कबाब तली है, तो वो ऐसे कहती है बहुत शुक्रिया अब आप ये भी कर लें। मैंने कहा असली लाइफ में आई एम श्योर कि कुबरा असली लाइफ में भी उतनी ही प्यारी है उतनी अच्छी है जितनी वो वैसे स्क्रीन पर नजर आती है, लेकिन इस तरीके ये सीखना चाहिए कि आपके नौकरों से किस तरीके से बात करनी है, कोई जो बंदा अपने नौकरों से अच्छे से बात करता है और ये दूसरों के सामने तो फिर भी सब कर लेते हैं, मगर वैसे भी नॉर्मली वो वाकई में एक अच्छा इंसान है। खैर आप लोग मुझे मैसेज करें आर्जे समिया के फेसबुक पेज पे या एट आर्जे समिया इंस्टाग्राम पे, आपने हमें ये बताना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी नजर में काबिले एहतराम है। और सनी मैं आपको बता दूं कि ये हमारा क्लासिक टाइम है, पुराने गाने हम इस वक्त लगाते हैं 9 से 9:15 के दरमियान, और आज का हमारा क्लासिक सॉन्ग कौन सा है, अच्छा देखते हैं मैंने निकाला था कुछ आधी, चलिए ठीक है अभी हम ये वाले गाना लगाते हैं, वो बातें तेरी, आइए सुनते हैं।

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट की, ऐसी कौन सी चीजें जो लोगों को आपकी नजर में मोहतरम बनाती है। एक सिंपल सी चीज है और वो है अपना काम ईमानदारी से करना। वो भले कोई भी जॉब हो, भले वो माली हो, भले वो सफाई करने वाला हो, खाना बनाने वाला हो, जो काम अपना, जो भी बंदा अपना काम ईमानदारी से करता है और बगैर किसी के देखे, बगैर कैमरा लगे, वही बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है इंसान की नजर में। और अफसोस की बात यह है पाकिस्तान के अंदर कि जो सबसे ज्यादा सो कॉल्ड मोहतरम इदारे या मोहतरम डिपार्टमेंट होते हैं, वही अपना काम मतलब सबसे ज्यादा नालायकी से करते हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट है। मतलब आप और मुल्कों में होगा कि जी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट के लोग, उनकी भाई बड़ी बात होगी कि भाई क्या बात है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी और मुल्क में जाते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल नॉर्वे, तो एक आम इंसान से ज्यादा आप उन्हें गया नॉर्वे की गवर्नमेंट में जो काम करता होगा वो ज्यादा काबिल एहतराम है, गवर्नमेंट भाई सरकार। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है, अगर आप सरकारी नौकर हैं तो लोग अपने आप को तो आप बहुत काबिल मोहतरम समझेंगे, भले आप नंबर प्लेट भी लगा दें अपनी सरकारी वाली के, गाड़ी भी मिल जाएगी आपको, सारी सहूलियात होंगी आपके पास, लेकिन आम इंसान की नजर में आपकी इज्जत है ही नहीं। भले आप रिश्वत लेते हैं या बहुत ईमानदार हैं, लेकिन जो परसेप्शन हमारे जहनों में बन चुका है कि सरकारी मुलाजिम पक्का रिश्वतखोर होगा, ये है ही बेचारा, तो आप क्या करें। तो और दूसरी बात है, उन्होंने कोई कोशिश भी नहीं की ओवर द ईयर्स के 70 सालों के अंदर कोई अपनी छवि बता दें, अपने ही डिपार्टमेंट में एंटी करप्शन ऐसी सख्त लगा दें कि अगर कोई करप्शन करता पकड़ा जाए तो फिर सख्त सजाएं। आप सोच ही नहीं सकते कि आप गवर्नमेंट इदारों के अंदर कोई भी करप्शन हो सके, इन्होंने खुद क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सबसे सच बात यह भी यही है कि सबसे ज्यादा काम जो कम करते हैं वो हमारे सरकारी नौकर हैं। वो रिश्वत दे के वो इसलिए नौकरी करते हैं कि यार देखो अभी इन्वेस्टमेंट कर दो रिश्वत के अंदर, क्योंकि आगे जाके हमें एक ऐसी नौकरी मिलने वाली है जिसमें हमारे पास पेंशन है, हमारा घर फ्री, हमारा सब कुछ ही फ्री, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, और हमने जो है ना बस काम भी नहीं करना। तो ऐसी नौकरी कहां मिलेगी। सबसे ज्यादा फेलियर अभी सिंध गवर्नमेंट का है ड्रग्स को लेकर, और खासतौर पर यह सबसे ज्यादा जाता है सिंध पुलिस का, इसलिए कि ड्रग्स इतनी कॉमनली और इतनी आसानी से अवेलेबल है कि मैं जानती हूं किसी एक ए लेवल्स की, उनके बच्चे ए लेवल्स में पढ़ते थे, स्कूल काफी मशहूर है, तो उन्होंने इस वजह से अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया कि इतनी कॉमनली और इतने आराम से उस स्कूल के अंदर ड्रग्स मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को बचाने का ड्रग्स यही तरीका है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल से उठा लूं, क्योंकि स्कूल के इंतजामिया और गवर्नमेंट और पुलिस बिल्कुल फेल हो चुकी थी वहां ड्रग्स को रोकने में। आप सोचें कि कितने लेवल अभी ये इसलिए भी हुआ है ड्रग्स पे ऑपरेशन, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस के घर तक, उनके बच्चों तक ये ड्रग्स पहुंच गई थी, इस वजह से उनको एक्शन लेना ही पड़ा ड्रग्स के खिलाफ। कि कैसे पहुंची, खैर चलो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन खैर उन बच्चों की जाने गई हैं, और ये कहीं से भी कोई अच्छी बात नहीं है। और यहां पे ड्रग्स इतनी आसानी से अवेलेबल हैं कि बच्चे बच्चे को पता थी कि यार कहां पे, स्पेशली डिफेंस के कुछ इलाके हैं, कमर्शियल एरियाज हैं विच आर फेमस, कि वहां पे आराम से ड्रग्स मिलती हैं, वहां लोग खड़े हुए हैं, तो पुलिस क्या सो रही थी उस वक्त, मुझे समझ में आया पुलिस उस वक्त क्या करे। तो और आपको ये भी नहीं कि डिफेंस के अंदर आपको जगह जगह मोबाइल नजर आएंगी, वहां पे बहुत बड़े बड़े पुलिस अहलकार रहते हैं जिनकी पूरी गली में कब्जा होता है, पूरी गली कब्जा होता है, पता होता है कि यहां पे बड़ा अफसर रहता है, उन्होंने टेंट बनाए हुए होते हैं कि जी यहां पे टेंट के अंदर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे रहते हैं, तो पूरे पता होता है मोहल्ले में जी हमारी गली पुलिस। ऐसी फायदा आप लोगों की, आप डिफेंस में ही रहते हो, सबको डिफेंस में ही रहना होता है, सबसे ज्यादा आसानी से डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में ड्रग्स मिलती है, बच्चों को मिलती है, और काफी सालों से मिल रही है, और ये इतनी बुरी चीज है। कई ममालिक के अंदर ड्रग्स की सजा, ड्रग्स अगर आपके सामान में भी पाई जाए तो सजाए मौत है, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि ये कितनी बुरी चीज है, कि इससे न जाने कितने लोगों की जाने जाती हैं। और ना सिर्फ ड्रग्स, एक इतनी बुरी चीज है कि कोई बीमारी किसी को हो जाए ना, बंदा सब्र कर लेता है कि यार चलो बीमारी थी, अल्लाह की मर्जी थी, कि ड्रग्स एक प्रिवेंटेबल चीज थी,
ڈرگس کی وجہ سے اگر کسی مطلب باپ کو ڈرگس کی عادت لگ جائے یا نشے کی عادت لگ جائے تو وہ چیزیں بیچنا شروع ہو جاتا ہے گھر کی, اس کے چھوٹے بچے بچوں کو کام پہ لگنا پڑتا ہے, بیوی کو کام پہ لگنا پڑتا ہے, اور کسی طریقے سے وہ کنٹرول نہیں ہوتی, اور گھر والے دعا کرتے ہیں کہ یہ بندہ نہ کہیں چلا جائے کیونکہ یہ جتنا وقت رہتا ہے وہ ہمیں تکلیف ہی دے رہا ہوتا ہے. اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن, اور جو پریونٹیبل تھی, اٹ کڈ ہیو بین پریونٹیڈ, اینڈ اٹ واز اٹس ویری سیڈ. چلو شکر ہے کہ سندھ گورنمنٹ اب اس بارے میں کوئی ایکشن لے رہی ہے, اور آگے ہو سکتا ہے کہ بہتری آئے, لیکن پلیز میں آپ کو یہی بولوں گی کہ اپنے اسکول کالجز میں جو بچے جا رہے ہیں نظر رکھیں کہ ان کے دوست کون سے ہیں, ان کو رات کے وقت باہر جانے نہ دیں اکیلے, اور کیوں آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت خود ہی کرنی ہے. ڈرگس از ویری ویری کامن, اور اسپیشلی ان دی ایریاز آف ڈیفینس اینڈ کلفٹ, کیونکہ میرا ظاہر ہے وہیں کا ایکسپیرئنس ہے, اور علاقوں میں بھی ہوگی کیونکہ آپ کو پتا چلا ہے کہ نیٹ ورکنگ تو بہت زیادہ ہے, لیکن یہ بہت ہی گندی چیز ہے, مزاق نہیں ہے, اور نہ جانے لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے جو لوگ ڈرگس کر رہے ہوتے ہیں, یا لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور لوگ آرام سے ڈرگس خرید رہے ہوتے ہیں. تو اچھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی ہے, اور پلیز اپنے بچوں کو بچائیں اس بری چیز سے, اور آئی ہوپ کہ سندھ گورنمنٹ اب جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں اس بات کا خیال رکھے گی, اور بچوں کو اس چیز سے, اس زہر سے بچائے گی. اینیویز تو آپ ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے ایسی جو لوگوں آپ کی نظر میں لوگوں کو احترام محترم بناتی ہے, محترم محترم بناتی ہے. تو ہمیں انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسیجز کا, اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں جنید جمشید کی آواز میں یہ ٹریک, آئیے سنتے ہیں.

0: Good morning, Pakistan, on FM 100.
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाने, तालीम, सेहत, गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5.
4: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है. श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो.
3: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाने, तालीम, सेहत, गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5.
5: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
6: नई स्कीम,
7: कमिटी,
8: लाट बनाए फरो.
9: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
10: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाने, तालीम, सेहत, गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5.
10: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
11: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500.
12: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात.
11: एक दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार.
13: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
3: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाने, तालीम, सेहत, गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5.

0: वाह भाई, गाय वगैरह सब बिक गए, कैश रख लिया ना इबादत से?
1: कैश अब जेब में नहीं, बराए राज बैंक अकाउंट में, पेमेंट लेता हूँ सिर्फ रात से, यही है कैश की पक्की हिफाजत।
2: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
3: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
4: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
5: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
8: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पावे।
9: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
10: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
11: एंड
12: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
13: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
14: Like us on facebook.com/FM247365.

0: इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए, और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
4: अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
3: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
5: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए, और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Back to back, only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM.

0: Permafrost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन टू इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज़।

0: फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: हाई ब्लड प्रेशर से आगाही, सेहतमंद माशरे की बुनियाद, वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक। 18 से 24 मई के दरमियान सुनिए मालूमती प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान पर एडको ग्रुप और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तआवुन से।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Trading, trust me bro.
3: Nice scheme.
4: Committee.
5: Plot banaye faro.
4: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा।

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

247-365. FM 247-365.

0: 100. You're in tune with the Lunchtime Special on the Big One. FM 100.
1: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the Lunchtime Special with the one and only Fatima Khan.
2: Join Fatima Khan.
1: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
2: Midday break a blast.
3: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To bhai, as usually hungi aapse khoob sari baatein share karenge, kuch information, aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music. होगी आपसे भी चुटचाट, पूछेंगे आपकी भी हाल हवाल कि भाई कैसा गुजारा आप सब ने अपना छुट्टी का दिन. तो भाई क्या कुछ किया था, अगर याद नहीं आ रहा तो जल्दी से याद कर लें, क्योंकि हम जा रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज करने. तो बाकायदगी से आगाज के बाद हम आपसे पूछेंगे हमारा कंपलसरी सवाल. तो जब तक हम ट्रैक को शामिल कर रहे हैं, आप सोचें और फिर बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा.

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ। तो भाई जबकि आगाज हो चुका है तो आपको तरीकाकार भी बता देते हैं कि कैसे आपने अपनी अपनी हाजिरी लगानी है। तो जल्दी से उठा लेंगे अपना मोबाइल फोन और जाएं उसके राइट मैसेज ऑप्शन में, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो इस तरीकाकार के जरिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने हाल अहवाल बता सकते हैं और कैसा गुजरा भाई आप सबका छुट्टी का दिन, ये भी आप हमें बता सकते हैं। आई होप कि आप सबका छुट्टी का दिन अच्छा गुजरा होगा, कुछ ना कुछ आपने काम किया होगा या फिर भाई गर्मी का रोना रोया होगा। आए है ये भी ताजा तरीन सूरत हाल है कुछ शहर कराची की, लेकिन आज का मौसम कई दिनों से काफी बेहतर है क्योंकि आज जो थी ना वो समुद्री हवाएं चलने की पेशन गोई मौजूद थी, जिसकी वजह से कराची का दर्जा हरारत इस वक्त थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू पास्ट डेज, क्योंकि भाई इस वक्त तक रियल फील्स लाइक जो होता है ना वो 39, 40, 41, 42 के करीब ही होता है। बट द गुड थिंग इज दैट आज मैंने आते ही साथ कहा कि जरा दर्जे हरारत पर नजर डालते हैं, तो इस वक्त तो रेयर फील्स लाइक 35 है यानी कि 35। अब गुजरते वक्त के साथ इसमें कितना इजाफा होता है ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी के लिए अच्छी खबर है कि 35 है और वैसे ही 20 मई के बाद जो है वो मौसम में थोड़ी सी तब्दीली की पेशन गोई है, यानी कि धूप की तपश में भी कमी होगी और थोड़ी गर्मी में भी। तो हो सकता है यही कुछ गुड साइंस हैं जो हमें आज के दिन नजर आ रहे हैं। और चांद भी नजर आ गया है, जी हां इंशाल्लाह जो है वो हम 27 मई को जो है वो ईद मनाएंगे और उसकी तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं जगह जगह। अब आपको मजीद जानवर नजर आना शुरू हो गए हैं और आई थिंक स्कूल का भी लास्ट वीक यही है, यस लास्ट वीक यही है और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं कि वो दिन कब आएगा जब छुट्टियों का हो जाएगा ऐलान और बच्चे करेंगे एंजॉय अपने जानवरों के साथ। उनके साथ एंजॉयमेंट मतलब टू मच फन, यानी कि ना तो सोना होता है, बस सिर्फ घर से बाहर रहना होता है, उनकी खिदमतों में जो है वो बच्चों के साथ साथ बड़े भी जो है वो अपना फुल टाइम उन्हें पर इन्वेस्ट करे होते हैं, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। और जो गलियों में रौनक एक नजर आती है ना वो बड़ी खूबसूरत लगती है, वो पूरे साल में आपको सिर्फ ना बकरीद के दिनों में ही देखने को मिलती है और वो रौनक बिल्कुल अब नजर आना शुरू हो गई है। कल रात से ही जो है वो भाई गलियों में जो है वो रौनक ही रौनक है, शोर शराबा है। अच्छा इस रौनक से ना बहुत मजे की बात होती है कि आपकी ना बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो जाती है और आपको पता नहीं होता कि अच्छा ये लोग भी यही रहते हैं, अच्छा ये वो हैं, क्योंकि आजकल वाकई में इतनी मसरूफियात है लोगों की कि विच इज आई थिंक आई मस्ट से थोड़ा सा सैड बात भी है कि हमें अपने मोहल्ले वालों का पता नहीं होता सही से, बिकॉज इतनी मसरूफियात है भाई टाइम ही नहीं मिलता कि क्या करें, लेकिन इन दिनों में ना सबसे बातचीत भी हो जाती है, बहुत कुछ पता भी चल जाता है और इस तरह जो है वो आपको बहुत मालूम मिलती है कि अच्छा मेरे मोहल्ले में ये भी रहते हैं तो बड़ा अच्छा ये टाइम होता है, बड़ा रौनक का टाइम होता है और यस एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। तो भाई आप अपना जानवर ले आए हैं या फिर मजीद दिन गुजरने का कर रहे हैं इंतजार, तो ये भी हमें जरूर बताइएगा। जब तक आपसे हमने सवाल पूछा तो चलें जी एक अदर ट्रैक को शामिल कर लेते हैं, फिर आते हैं वापस। तो कैसे गुजरा आप सबका छुट्टी का दिन हमें जरूर बताइएगा।

0: बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
2: नशा परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो।
3: और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365. Don't miss out.
6: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
5: Join Fatima Khan.
6: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
5: Midday break a blast.
7: राइट जी, सो वेलकम बैक। छुट्टी का दिन कैसा गुजरा आप सबका, इस हवाले से हम आप लोगों से मालूमात ले रहे हैं और हमारे पास मैसेजेस भी आ चुके हैं। कहते हैं आपकी छुट्टी का दिन तो मसरूफ गुजरा, काम की नजर हो गया। ओके, दैट इज वेरी सैड। अच्छा, वैसे एक जानब हमें ये भी करना होता है कि हमारी प्लानिंग होती है कि छुट्टी का दिन है तो हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, और जब हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और वो ऐसी छुट्टी गुजर जाती है तो हमें बड़ा अफसोस भी होता। अल्लाह, हमें तो आराम करने का सोचा था पर सिर्फ काम ही काम हुए हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर आपने अपने काम करे हैं। पता है, कल मैंने भी यही प्लान किया था कि छुट्टी का दिन है तो मैं बहुत सारे अपने जो है वो काम करूंगी, और मेरी प्लानिंग यही थी कि बस सुबह उठने से लेकर रात सोने तक ना मैं सिर्फ और सिर्फ काम करूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने शायद एक आधा काम भी नहीं किया और मेरी छुट्टी का दिन गुजर गया। और मुझे बड़ा रिग्रेट रहा, बड़ा अफसोस रहा, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों किया। मुझे बहुत सारे काम करने थे छुट्टी वाले दिन और मैंने ये काम क्यों नहीं किए, और अब ये रिग्रेट में पूरा हफ्ता रहेगा। तो इसलिए अच्छी बात है कि आप छुट्टी वाले दिन अपने कामों को मुकम्मल कर लें, क्योंकि फिर पूरा हफ्ता बड़े बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ मसरूफियत चलती रहती है। सो आई थिंक इट्स बेटर कि अगर आपने छुट्टी वाले दिन अपने काम किए, सो आई मस्ट से मैं तो आपको अप्रिशिएट करूंगी।

क्योंकि काम हो जाए तो भाई बड़ा सुकून होता है। और हमारे पास एक और मैसेज आया था जिन्होंने भी मैसेज के नाम नहीं लिखा, कहते हैं आप ही कल छुट्टी के दिन मेरा तो जानवर भी आ गया। अरे वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त जो बच्चे होते हैं ना वो बड़ों की से छुट्टी का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब छुट्टी होगी, हम कब जानवर लेने जाएंगे। और ये बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है, बड़ा एक अच्छा मौका होता है। और अल्लाह पाक जिसको भी साथ देता है कुर्बानी करने की, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। और ये बड़ा अच्छा टाइम होता है। और अच्छा, अच्छे टाइम के साथ साथ ना ये भी बहुत अच्छी टाइम होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि जरूरी नहीं है सबके जो जानवर होते हैं वो ऐसे लगता है वो भी आपके, मतलब सब में इतनी अपनाइत होती है, इतने मजे से सब इस टाइम को इंजॉय कर रहे होते हैं। दिस इज नॉट कंपलसरी कि आपके पास अपनी गाय या बकरा हो तो ही आप जो है लोगों के साथ एंजॉय कर सकते हैं या उनके जानवर टहला सकते हैं। तो ये बड़ी प्यारापन, एक बड़ी अपनायत होती है जो हम पाकिस्तानियों में है, बड़ी अच्छी लगती है ये अपनायत के सब एक साथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं, टहला रहे हैं सब एक साथ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है जिसका जानवर है, सब बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी नाइस। तो भाई चंद लोगों ने तो अपना छुट्टी का दिन बता दिया है, लेकिन मजीद मालूमात भी जानना बाकी है। और भाई आज है 18th of May, सो हैप्पी बर्थडे टू यू अगर आज आपकी सालगिरह है। और आज कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ट्रैक एंड देन वी विल बी राइट बैक।

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकाले। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365.
6: हेलो माय फ्रेंड्स, सो आई एम बैक। और गुफ्तगू का सिलसिला तो आप लोगों के साथ जारी रहता है जब तक हमारा और आपका साथ रहता है। अभी उसी के साथ साथ आज एक दिन मनाया जाता है जिस दिन का नाम है नेशनल नो डर्टी डिशेस डे। ओके, आई थिंक ये तो एवरी डे सेलिब्रेट होने वाला दिन है और इस दिन का मतलब ये है कि कोई भी जो बर्तन है वो गंदे ना रहे, आज इसका दिन मनाया जाता है। और इस दिन के बारे में तो खवातीन बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि इस दिन की हर रोज क्या अहमियत होती है। वैसे तो ये नेशनली मनाया जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जिसे ना इंटरनेशनली मनाना चाहिए। नो डर्टी डिशेज डे। ओके जी, सो एवरी डे हम जो है वो अपने बर्तनों को धोते हैं, हर मिनट धोते हैं, हर पल धो रहे होते हैं। जब बहुत सारे लोगों को ना ये एक मसला भी होता है जो वो गंदे बर्तन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्हें ना ये इस तरह का जो है वो मसला होता है कि वो जल्दी जल्दी जाते हैं और अपने बर्तनों को धोना शुरू कर देते हैं। बट आई थिंक इट्स वेरी यू नो डिफिकल्ट ऑल्सो, बिकॉज आप थक भी जाते हैं एक पल को। और एक पल को ये भी होता है कि जी किचन को साफ सुथरा रखें। और बर्तन तो भाई बरकत में अल्लाह ताला ने ना बड़ी बरकत दी हुई है कि इतने گندے ہوتے ہیں اتنے گندے ہوتے ہیں. اور اس برکت میں جو سب سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں. اللہ مطلب انکاؤنٹیبل برتن, اتنے برتن گندے ہوتے ہیں اور یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ اچھا پھر بھی اتنے سارے برتن موجود ہیں, کیونکہ رمضانوں میں چٹنیوں کے لیے یہ نکل رہا ہے, اس کے لیے وہ نکل رہا ہے, تو آپ کے جتنے بھی برتن ہوتے ہیں نا وہ بہت سارے نکلتے ہیں. اور پھر اس میں نا جو میلے ہونے میں جو اضافہ ہوتا ہے نا اللہ, اور یہ وہ بات ہے جو ہر ایک خواتین سمجھ سکتی ہیں کہ جب برتن بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں تو دل پر کیسا اثر ہوتا ہے. تو یہ دن کو ہم کیا کہیں, یہ دن تو خواتین کے نام کرنا چاہیے نیشنل نو ڈرٹی ڈشز ڈے, کیونکہ وہی اس دن کو سمجھ سکتی ہیں, اس دن کو, اس درد کو سوائے خواتین کے اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. تو بھائی آج یہ دن منایا جا رہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, اپنے تمام سننے والوں کو اس دن کے حوالے سے بھی آگاہی فراہم کر دی چلوں. اور بھی کافی دن منائے جا رہے ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے, لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ سا دن تھا تو میں نے کہا چلو بھائی سب سے پہلے اس دن کی بات کرتے ہیں. اور پھر ویسے آج بہت زیادہ بھی نہیں منائے جا رہے لیکن یہ ایک دن ہے جو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا اور میں نے کہا ضرور اس پر بات کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل میوزیم ڈے بھی آج منایا جاتا ہے, سو بہت سارے لوگوں کو میوزیم جانا بہت اچھا لگتا ہے. اینڈ یس, میوزیم میں بہت آپ کو معلومات ملتی ہے چیزوں کے حوالے سے, دیٹ از آلسو ویری نائس. تو آج اس کا انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے, اور اگر آپ کی برتھ ڈے بھی ہے تو ہیپی برتھ ڈے. تو کیا کہتے ہیں کیوں نہیں کہتے ٹریک کی جانب جا جائے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا آپشن ہے. تو چلیں جی ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

ना भूल जाते हैं ना, तो अगर आप प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल सुनते हैं ना, तो फिर आपको फौरन से पानी पीना याद आ जाएगा, क्योंकि हम आपको वक्फे वक्फे से इस चीज की याद दहानी करा रहे होते हैं कि जी पानी पिए, पानी पीना बहुत जरूरी है आपकी सेहत के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई पानी आप ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि आप लोग रहें चुस्त और तवाना। और इसी के साथ साथ क्या कहते हैं, चलते हैं एक और ट्रैक की जानिब और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Shifa wahan se shuru hoti hai jahan kudrat muskurati hai. Schwabe Single Remedies. कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हंडे. लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: You're in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.

0: कि जी इस प्रोग्राम के सेकंड हाफ की भी रिवायत हो गई है कायम, यानी कि ट्रैक हमने आपको डेडिकेट कर दिया है। लंच के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि जी क्या पक रहा है, क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है। तो भाई आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं, कुछ हेल्दी है, कुछ अनहेल्दी है, कोई जंक फूड है या फिर नहीं भाई कुछ बहुत ही हेल्दी है। इट डिपेंड्स ऑन यू, वैसे जरूरी नहीं है। कभी कभी हम जंक भी खा लेते हैं और मुझे लगता है कि छुट्टी वाले दिन जरा ज्यादा खाया जाता है, ज्यादा शौक से खाया जा रहा होता है, बिकॉज आपकी छुट्टी का दिन मतलब आपकी आजादी का दिन आपको लग रहा होता है और आप कहते हैं कि छुट्टी के दिन को ना भरपूर तरीके से इंजॉय किया जाए और अगर बाहर खाना खाकर कर लिया जाए तो भाई लगता है कि मजा ही दुबाला हो चुका है। तो बाहर के खाने से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है हम सबको, जिसमें मैं अपना भी नाम लूंगी। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं जरूर कहती हूँ, लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप बाहर का खाना मत खाएं, लेकिन ऐसा है कि बाहर के खाना हम भी खाते हैं और इस आदत को खत्म करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो हम कोशिश कर सकते हैं। तो वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है कि यानी वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ या थ्राइस इन अ मंथ भी आप खा लें तो चलो सही है, लेकिन एवरी डे ना खाएं ये अच्छा नहीं है। और हकीकत है कि जितना भी आप बाहर का खाना खा लें, लेकिन जो मजा आपको घर के खाने में आता है ना, और ये बात वाकई में बिल्कुल सही है और ये हम सबका जरूर एक शौक होता है हम सबकी जिंदगी में कि हमें ना कोई 7-8 दिन ऐसे मिले कि हम ना दिनों रात बस बाहर का खाना खाएं और हमारे पास बहुत सारे पैसे हों कि हम बाहर का खाना खाएं, लेकिन वाकई में अगर आप ये 7-8 दिन बाहर का खाना खाते ना तो आपको लिटरली क्रेविंग हो रही होती है घर के खाने की, घर का वो बना हुआ खाना, वो दाल, वो सब्जी, वो कुछ भी, क्योंकि घर और बाहर के खाने में इतना फर्क है कि फिर आपको ना बड़ी जोर की याद आती है घर के खाने की। तो ये बात तो ठीक है, वैसे भी जब ये चीज हमें मिल जाती है ना तो उसकी वैल्यू वैसे ही खत्म हो जाती है, तो ये तो होता है। खैर भाई अपने लंच में क्या है हमें जरूर बताएं। हमारे पास मैसेज आया है, कहते हैं आपकी दाल है और राइस भी है, वेरी नाइस। दाल चावल तो मतलब फॉर एवर ग्रीन ना, दाल चावल के बगैर तो लंच इज इनकम्प्लीट। तो कुछ हो ना हो लंच में, लेकिन दाल चावल जो है ना वो लाजमी होते हैं और दाल चावल को हम रोजाना की बुनियाद पर आई थिंक शामिल जरूर करते ही हैं। जरी नूर में आई है अभी तक, भाई जरी नूर के लंच में क्या है जरा ये भी जानेंगे कि जरी नूर ने इस वक्त क्या पकाया है या क्या बनाने का इरादा है, क्योंकि 12 से 3 के दरमियान गैस का आमद होती है और इस आमद का सब फायदा उठा रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी जो है वो खाना बना लें। अच्छा, गैस की कल बंदिश का शिकार हुआ है कराची शहर और बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे इलाकों में कल गैस सही से नहीं आ रही थी, लेकिन अभी मैंने पढ़ा है कि भाई ये मसला जो है वो हल हो चुका है। अब अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग, जो कि अब हमें इस 12 घंटे में बड़ी महदूद टाइमिंग मिल गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली गैस आएगी, क्योंकि ये जो इशू था वो अब रिसॉल्व हो चुका है। सो ये है ताजा तरीन सूरत हाल। आई होप एंड आई विश कि आपके इलाके में भी ये मसला हल हो गया हो, क्योंकि अब ये भी बड़ा गलत हो रहा है कि जो टाइम है ना उससे 10-15 मिनट पहले गैस चली जाती है और 10-15 मिनट लेट आती है, तो यानी कि जो हमें वक्त दिया गया है उसमें भी कंजूसी की जा रही है। आय हाय हाय हाय, हम बेचारे कराची वाले, हम सिर्फ कराची वाले नहीं, हम बेचारे पाकिस्तानी इस वक्त किस किस मुश्किल का शिकार हो रहे हैं। गैस की बंदिश बड़ी बुरी है भाई, क्योंकि अब हम जब वो पुराने दिन याद करते हैं ना, आय हाय हाय, यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वो दिन भी हमने गुजारे हैं जब हम 24 घंटे गैस के मजे ले लिया करते थे और हमें तब उसकी अहमियत ही नहीं होती थी, और अब हमें ना बड़ी अहमियत होती है, बड़ी शिद्दत से वो दिन याद आते हैं जब हमारे पास गैस बे इंतहा थी, बेहिसाब थी। क्या थे वो दिन, वो कहते हैं ना वो दिन भी क्या दिन थे, पर अब वो दिन गुजर गए हैं। तो चलिए नहीं, हम भी चलते हैं ब्रेक की जानिब और आते हैं वापस ट्रैक के साथ।
1: कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
2: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
3: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: This program is brought to you by
5: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
4: FM 100, like us on facebook.com/fm247365 fm247365
6: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

यस एवरीबॉडी, सो लंच पर हमने की कुछ बात कि बाहर का खाना और बाहर के खाने से उनसियत जो हम सबको है शदीद दिवाली कि भाई बाहर का खाना खा लें तो भी मजा ही आ जाता है और लगता है कि बस जो भी बाहर का मिल जाए ना वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जब आपके घर में पकती हैं वो आप नहीं खाते, लेकिन बाहर के खाने की चीजें ना तो आप बड़े हैप्पीली उस चीज को खा लेते हैं। सो ये वाला मसला भी है, तो मैं कहती हूँ अच्छी बात है, जो चीज आप नहीं खाते ना वो आपको बाहर का खाना कह कहकर ना इस तरह करके खिलाना चाहिए। और ये ट्रिक तो सिर्फ हमारी माओं को पता होती है कि वो कैसे कन्विंस कर लेती है हमें किसी भी चीज को खिलाने में। एंड आई मस्ट से कि वो लोग बहुत अच्छे हैं जो हर चीज खा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको हर चीज खानी चाहिए। आजकल बड़े नखरे हैं कि जी ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और मेरे भी बड़े नखरे हैं और ये बहुत गलत बात है मस्त से, चाहे वो सब्जियां हो वो गोश्त हो, आपको हर चीज खानी चाहिए। ये चीजें आपके जिस्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो जो चीजें आप नहीं भी खाते आप उन्हें जरूर ट्राई करें, खाने की आदत डालें, क्योंकि आपके जिस्म को इन सारी चीजों की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फल नहीं खाते, उन्हें फल नहीं पसंद, लेकिन फल के भी बहुत सारे फवायद हैं। क्या आप जानते हैं कि जैसे हमने हमेशा एक बात ये सुनी है कि अगर आप रोजाना की बुनियाद पर एक सेब खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं, वैसे और भी बहुत सारे फल हैं जिन्हें खाने से आप बहुत सारी चीजों से बहुत दूर रह सकते हैं। जैसे कि अगर आप रोजाना की बुनियाद पर एक कीनू लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, अब बट वो सीजनल होता है, लेकिन अगर आप वो भी आप लेते हैं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से दूर रहेंगे। तो आप ये देखें कि हर सब्जी और हर फल के पीछे ना कोई फायदा मौजूद है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है, तो इसलिए हर चीज को खाया पिया करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भी रशीद खान ने हमसे एक ट्रैक की रिक्वेस्ट भी की थी, तो चलें जी उसे भी करते हैं शामिल और बढ़ते हैं आगे।

यस एवरीबॉडी, सो इसी के साथ साथ जो है वो भाई प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का वक्त हुआ जाता है खत्म। और अब से कुछ देर बाद मेरी आपसे मुलाकात होगी एक अदद मालूमाती प्रोग्राम में, तो आपने वो भी जरूर सुनना है। और इसी के साथ साथ आपने मुझे प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल से देनी है इजाजत। तो रखिए अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और मेरी इस बात पर जरूर अमल करिएगा। और आपने इसको जरूर करना है अपने

और इसी के साथ साथ आपने मुझे प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल से देनी है इजाजत। तो रखिए अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और मेरी इस बात पर जरूर अमल करिएगा। और आपने इसको जरूर करना है, अपने दिल को करना है थोड़ा बड़ा। और बहुत सारे लोगों की ऐसी नेचर होती है, मतलब मैं इसमें कोई बुराई नहीं कह रही, लेकिन उसके लिए मेरा कहने का मकसद है कि आप जरूर ट्राई करें, आप कोशिश करें अपने दिल को बड़ा करने की, तो अल्लाह पाक आपको और भी बहुत नवाजेगा। क्योंकि अपने दिल को तंग कर लेना, अपनी आमदनी को, अपनी चीजों को तंग कर लेने की मनस्बत होता है, तो इसीलिए अपने दिल को हमेशा बड़ा रखें, खुला रखें, अल्लाह पाक आपको और भी बहुत नवाजेगा। और इसी के साथ साथ आपने देनी है आरजे फातिमा खान को इजाजत प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल से। तो मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में जल्द एक आदत मालूमाती प्रोग्राम के साथ। अनटिल एंड अनलेस टेक केयर, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।

0: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मस्नूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
1: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
2: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: This program is brought to you by
6: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features।
7: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें, डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
8: facebook.com/fm247365
9: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
10: Assalamu alaikum, Pakistan.

0: इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
2: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
3: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
4: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
5: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
6: This program is brought to you by
7: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM247365.
6: This program is brought to you by
7: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
9: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
11: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
12: Assalamu alaikum, Pakistan.

0: Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. Aap sabko khushamadeed kehte hain. Aaj World Hypertension Day 2026 ke mauke par EDCO Pakistan aur Cardiac Society ke ishtirak se high blood pressure ke mutalliq awami agahi program The Hypertension Sense pesh kiya ja raha hai aur The Hypertension Lens ke wale se aaj hum bahut sari baat karenge kyunki hypertension ko ek khamosh قاتل کہا جاتا ہے اور پاکستان میں اب یہ ہائپر ٹینشن بہت عام ہے تو اس کا کیا بچاؤ ہے کیا طریقہ کار ہے ہمیں اپنی طریقہ کار کس طریقہ کار کے ذریعے زندگی کو گزارنا ہے کیا احتیاط کرنی ہے اگر ہمیں آلریڈی بلڈ پریشر ہے سو ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے اس حوالے سے آپ کو آج معلومات دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راحیلہ خواجہ ایس سی پی ایس کارڈیولوجی سینئر رجسٹرار انٹرنیشنل کارڈیولوجسٹ اکیوٹ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز السلام علیکم
1: Walaikum salam
0: and welcome to the program.
1: Thank you Fatima, thank you so much.
0: You're welcome. So ये EDCO groups के EDCO laboratories और cardiac society के तावन से जो ये program पेश किया जा रहा है hypertension के हवाले से तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बुलंद फिशारे खून क्या है आप हमारे सुनने वालों को बताएं
1: अच्छा hypertension is just अगर simple language में हम कहें तो raised blood pressure मतलब blood pressure का शरीयानों में मुसलसल बढ़ा रहना इज हाइपरटेंशन लेकिन इसका क्रॉनिकली अगर हम देखें कंटिन्यूसली अगर बढ़ा रह रहा है तो ये एक बीमारी की नौयत ले रहा है
0: ओके बिल्कुल ठीक है अच्छा और आप मुझे भी बताइएगा कि बुलंद फिशारे खून की वजह क्या है
1: अच्छा इसकी बहुत सारी वजह हैं अगर हम देखें तो प्राइमरीली हमने मेडिकली इसको दो में डिवाइड किया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी और मोस्ट ऑफ इसके causes हमारी वजह से हैं मतलब लाइफ स्टाइल आपका कैसा है आपकी एक्सरसाइज कितना आप ओकेजनली करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है लेकिन हाँ कुछ हद तक इनके बाकी भी causes हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो इनहेरिटेड भी होता है आपके मेटाबॉलिक causes की वजह से हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ ट्यूमर्स भी करवाते हैं तो उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसका मोस्ट कॉमन कॉज फियोक्रोमोसाइटोमा वगैरह होते हैं तो उनको भी मद्देनजर रखना होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किस एज में हाइपरटेंशन डेवलप किया है
0: okay.
1: वो आपको डिफ्रेंशिएट करता है और आपके डॉक्टर आपको गाइड करते हैं कि आप प्राइमरी में लैंड कर रहे हैं कि सेकेंडरी में लैंड कर रहे हैं
0: ओके ऑल राइट बिल्कुल ठीक है अच्छा डॉक्टर मैं ये भी जानना चाहूंगी ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल क्यों कहा जाता है
1: अच्छा ब्लड प्रेशर बींग अक्यूट कार्डियोवैस्कुलर कंसल्टेंट मैं आपको बताऊं ब्लड प्रेशर वो है जो डायरेक्ट इमरजेंसी में मालूम होता है
0: अच्छा
1: मोस्ट ऑफन और ये वाहिद प्रिवेंटेबल कॉज है इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं मेजर पोर्शन ऑफ द डिजीज आर प्रिवेंटेबल स्ट्रोक किडनी डिजीज आई डिजीज ये सारी आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर पता है लेकिन आवाज यही है कि ब्लड प्रेशर पता कैसे चले वाकई में ये साइलेंट किलर है क्योंकि ये आपको पता ही नहीं चलता दैट्स व्हाई डू रिमेम्बर दैट नोइंग योर नंबर्स आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए यही इसकी की है कि अगर आपको अपने नंबर्स रूटीन चेकअप पे पता है तो फिर यू आर नोइंग अबाउट योर ब्लड प्रेशर अदरवाइज 60s में जब वो डिजीज कर चुका होता है 70s में जब आप खुदा ना खासा हार्ट फेलियर फेस कर चुके होते हैं किडनी डिजीज फेस कर चुके होते हैं देन आपको पता चलता है कि ब्लड प्रेशर है सो आफ्टर 20 रूटीन चेकअप इज कंपलसरी
0: ओके आफ्टर 20 ओके ऑल राइट ये तो भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अब हम सबके लिए कि 20 साल की उम्र के बाद से आपको अपने ब्लड प्रेशर को जरूर चेक करना है अच्छा डॉक्टर अभी आपने जिक्र किया कि आफ्टर 20 आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक करें तो क्या करें हम लोग रोजाना की बुनियाद पर चेक करें या कोई खास औकात पर चेक करें या किस तरह हमें चेक करना है
1: अच्छा जो हमारी गाइडलाइंस कहती हैं कि 20 ईयर्स के बाद हमारी एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाती हैं जबकि किताबों में लिखा हुआ है कि आपके एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस जब आप छोटे बच्चे होते हैं और छोटी छोटी टेंशन हो रही होती है तब से आपके जनरेट होते हैं लेकिन 20 के बाद ये प्रोनाउंस्ड हो जाते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि 20 के बाद एटलीस्ट एनुअल चेकअप आप लाजमी करवाएं जिसमें आपके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं ब्लड शुगर्स होती हैं और इसके साथ एटलीस्ट वंस इन अ 3 मंथ आप अपने ब्लड प्रेशर वेट आप लाजमी चेकअप करवाएं
0: ओके ऑल राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीजों का आपने रखना है ख्याल. आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम द हाइपर टेंशन लेंस, और ये प्रोग्राम जो है वो एडको लेबोरेटरीज और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावन से आपकी खदमत में पेश किया जा रहा है. और ये पूरा वीक जो है वो एडको लेबोरेटरीज और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम आपकी खदमत में पेश करते रहेंगे. ये आप एफ एम 100 के मुख्तलिफ शहरों के स्टेशन पर भी सुन सकते हैं एफ एम 100 के, और इस पूरे वीक में आपको ये आगाही प्रोग्राम सुनने को मिलेंगे. और इसी के साथ साथ सब मेरे साथ डॉक्टर राहिला ख्वाजा मौजूद हैं जो आप लोगों तक मालूमात फरहम कर रही हैं. अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये भी बताइएगा कि हाइपरटेंशन में नमक का इस्तेमाल क्यों नुकसानदेह होता है.
1: हाइपरटेंशन एक्चुअली होता है कि हमारी शरीयान में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो किस प्रेशर के साथ चल रहा है और कितनी देर के लिए. तो दैट डू मीन्स ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली हाई है, इसी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है. अब अगर आप इसमें फ्लूइड लेवल इंक्रीज कर दें तो अल्टीमेटली प्रेशर्स और हाई हो जाएंगे. एंड द मैजिकल थिंग इज कि जहां भी सॉल्ट होता है वो अट्रैक्ट करता है फ्लूइड को अपने पास.
0: ओके,
1: दैट्स व्हाई वो फ्लूइड रिटेंशन इंक्रीज करता है. जैसे ही टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज हुआ है तो दैट अल्टीमेटली विल इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर्स. सो लो सॉल्ट डाइट इज हाईली रिकमेंडेडेड फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर्स.
0: ऑलराइट. अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइएगा मुझे कि ब्लड प्रेशर, जहां देखा गया है ब्लड प्रेशर और ज़ायबतीस का क्या कोई आपस में कोई ताल्लुक है, क्योंकि जिसे ब्लड प्रेशर होता है उसे ज़ायबतीस का भी जो है वो खदशा रहता है या हुआ हुआ होता है. लाजमी लोग ब्लड प्रेशर और शुगर की गोली रहते हैं, तो ये क्या ताल्लुक है दोनों का आपस में.
1: वेरी नाइस क्वेश्चन, दे बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स.
0: अच्छा
1: हाँ, तो एक है दूसरा आ जाएगा, या पहले कोई पहला नंबर आया या दूसरा नंबर, लेकिन आ ही तो जाएंगे. एंड बोथ हैव सिनर्जिस्टिक, मतलब एक दूसरे को और ज्यादा वो आग देते हैं.
0: अच्छा
1: ठीक है,
0: इतने तो पके
1: जी बिल्कुल पके दोस्त हैं. तो अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, डायबिटीज है तो हाइपरटेंशन होने के ज्यादा चांसेस हैं. लेकिन ये दोनों अल्टीमेट इनका गोल होता है एथीरोस्क्लेरोसिस, मतलब स्टिफनिंग ऑफ द वेसल्स और इनके अंदर क्लॉट्स बनाना, खुरदरापन आपकी वेसल में बनाना, तो ये उसको और ज्यादा एग्रेसिव कर सकते हैं. तो दैट डू रिमेम्बर कि आपको अगर ब्लड प्रेशर के अलामत आ रहे हैं या शुगर के अलामत आ रहे हैं, आप क्रॉस चेक लाजमी करें कि अपोजिट दूसरी भी डायग्नोसिस आपके साथ ना अटैच हुई हो. और डू रिमेम्बर जितने भी हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस के स्कोर्स हैं, हमारे पास इस्कीमिया के स्कोर्स हैं, अटैक के स्कोर्स हैं, स्ट्रोक के स्कोर्स हैं, उसमें हाई नंबर ऑफ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है. ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आया है तो शायद हम उसको सेकेंड वे में रिपीट करके दोबारा सुनना चाहेंगे अगर वो डायबिटीज है. अगर वो हाइपरटेंशन है तो हम वापस उसको खरीदना चाहेंगे कि कहीं कुछ और डायग्नोसिस भी ना निकले. दैट डू रिमेम्बर, वो हमारे उस्ताद साहब कहते थे कि अगर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है ना, तो सैलाब आने वाला है तो खिड़कियां दरवाजे बंद ना करें. आप अपने बंद को ऊंचा करें, और बंद ऊंचा आपके शुगर और ब्लड प्रेशर से होता है.
0: सही बात है.
1: डू नो योर नंबर्स, कंट्रोल योर नंबर्स.
0: बिल्कुल सही बात है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अभी हमें बताया है डॉक्टर राहिला ने कि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इन दोनों की दोस्ती खत्म कराना है आपका काम.
1: लाजमी
0: ये आप लोगों की जिम्मेदारी है. आज हम पहली दफा आप लोगों से ये कह रहे हैं कि इस अच्छी वाली दोस्ती को खात्मा कर दें या इन्हें दोस्त बनने ना दें, तो ये जिम्मेदारी आपकी है. तो इसे आप किस तरह कर सकते हैं, इसका तरीकाकार भी जो है वो डॉक्टर हमें बता रही है, आप लोगों तक मालूमात फराहम कर रही है. अच्छा डॉक्टर, क्या हाई ब्लड प्रेशर जो है वो गुर्दे की बीमारी का सबब भी बनता है.
1: एग्जैक्टली देखिए, हाई ब्लड प्रेशर इज ब्लड प्रेशर और जो डायबिटीज है ना, वो डिजीज ऑफ द सिस्टम है.
0: ओके
1: आप बताएं कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें शरीयान नहीं है. शरीयान तो हर जगह है, तो जहां जहां वो सर्कुलेट करते हैं ना, उस एरिया को वो डैमेज करते हैं. और हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है किडनी, क्योंकि वॉट एवर यू हैव टेकन यू हैव टू एक्सक्रीट वाया दैट वे. ठीक है, तो मेन सॉल्ट जो मैनेजमेंट होती है, फ्लूइड मैनेजमेंट होती है, जो दोनों ब्लड प्रेशर कॉज करती हैं, वो आपकी होती है किडनी की तरफ से. तो कंटिन्यूअसली आपकी किडनी उस वजह से अफेक्ट होती है. डू रिमेम्बर इफ यू आर डायग्नोस्ड विद हाई ब्लड प्रेशर, सीरम क्रेटिनिन, ये वर्ड आप मेरा लिख लें, याद कर लें, सीरम क्रेटिनिन वंस इन अ ईयर आप लाजमी अपना चेक करवाएं.
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो आपने इसको जरूर चेक कराना है. ये आप लोगों तक मालूमात हम फराम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी इसकी जो है वो थोड़ी हाव न हो. अच्छा डॉक्टर, मुझे भी बताइएगा, अभी आपने गुर्दे के हवाले से तो हमें बताया ही, क्या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फालिज भी हो सकता है, फालिज का सबब भी बन सकता है.
1: एग्जैक्टली देखिये, फालिज की जब हम बात करें ना, तो हम दो में डिवाइड कर देते हैं. ایک ہوتا ہے بلیڈنگ والا اور ایک ہوتا ہے کلاٹ والا جس میں کلاٹ جم گیا ہے. اور ہائپر ٹینشن ان دونوں کی موسٹ کامن اینڈ پریونٹیبل جس کو ہم کیور کر سکتے ہیں, جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں وہ کاز ہے. باقی تو ایک ہوتا ہے نا قدرت کے ہاتھ میں یہ ہونا ہی ہے کیونکہ یہ جینیٹکس میں, یہ ایسا نہیں ہے, اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں, آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. تو اسٹروک دیکھیں اٹ از مورٹیلٹی اپنی جگہ ہے, ہمیں پتا ہے کہ جب موت ہونی ہوتی ہے تو ہوتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بلڈ پریشر کروا کر خود کو خود دعوت دی ہے
0: اور
1: محتاجی کو دعوت دی ہے. تو ڈو ریمبر اٹ از پریونٹیبل موربیڈیٹی ایز ویل ایز مورٹیلٹی, محتاجی اور موت دونوں سے بچاتی ہے.
0: صحیح بات ہے,
1: بلڈ پریشر آپ کو فائلج سے بچا سکتا ہے اگر آپ اس کے نمبر اپنے کنٹرول میں رکھیں.
0: یہ بات بالکل صحیح آپ نے کہی ہے کہ یہ احتیاط ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے, ہم کرتے نہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو شاید ہماری فیملی ہسٹری میں اس لیے ہمیں ہوگا. تو ڈاکٹر کیونکہ ابھی آپ نے فیملی ہسٹری کا ذکر کیا ہے تو میں ذرا اس کو مزید جاننا چاہوں گی کہ کوئی بھی بیماری اسپیشلی بلڈ پریشر اور شوگر کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کا شاید یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ اس ایج کے بعد ہمیں تو یہ ہونا ہی ہے کیونکہ ہمارے والدین کو ہے. سو کیا یہ کمپلسری ہے یا پھر اگر آپ اپنے لائف سٹائل سے اس کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں, اسے آنے نہیں دے سکتے؟
1: اچھا, دا اسپیکٹرم از ناؤ چینجنگ. پہلے کہتے تھے ڈائبٹیز آ گئی تو آ گئی, اب جائے گی نہیں. بلڈ پریشر آ گیا تو آ گیا جائے گا,
0: بالکل
1: ایسا کچھ نہیں ہے. اب اس اسپیکٹرم میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے, دیٹ از ریورسبلٹی. آپ ریورسبلٹی پہ بلیو کرنا اسٹارٹ کریں, ہماری سائنس نے کرنا شروع کیا ہے. ڈائبٹک پیشنٹ کا کنٹینیوسلی ویل کنٹرول ایچ بی ون سی آ رہا ہے, ایون ان 5 in 4% ایسے بھی آ رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ اس کانسیپٹ کو شیک کریں, اپنے ریورس مار رہے ہیں, آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں, آپ بیک ٹو پویلین ہو سکتے ہیں.
0: اوکے, یہ تو بڑی اچھی آپ نے ایک موٹیویشنل بات کہی ہے جو اس وقت لوگوں کے لیے سننا بہت ضروری, کیونکہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک دفعہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈائگنوز ہو گیا ہے سو اب ساری زندگی ہمیں دوا بھی کھانی ہے اور یہ خاتمہ نہیں ہو سکتا. تو اچھا ڈاکٹر, ابھی آپ نے کہا ہے کہ ریورس ہو سکتا ہے چاہے وہ شوگر ہے بلڈ پریشر ہے, سو کیا واقعی میں اس کا خاتمہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم وہ دوا کھانا چھوڑ سکتے ہیں؟
1: اچھا, اس میں نا ایک سائنس ہے.
0: جی جی,
1: دیٹ از کہ آپ کے نمبرز کیا ہیں. اگر ہم یعنی کہ اسٹیج پہ ہیں, اسٹیج ون اسٹیج ٹو پہ ہیں یا اسٹیج تھری پہ ہیں, دیٹ از اے میٹر. اگر آپ ایکسٹریم اسٹیجز پہ ہیں تو دوائی لائف لانگ چلے گی, پھر تو وہ آپ کی خاتون ہو گئی ہیں اور آپ اس کے شوہر ہیں, آپ کو لے کر چلنا ہے اس کو
0: ساری زندگی,
1: ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ارلی اسٹیجز میں تو ریورسبلٹی بالکل پاسبل ہے, لیکن وہ ایک اگر دوائی سنگل یا ٹوائس ان اے ڈے آپ پلس لے رہے ہیں وہ آپ کو محتاجی اور مورٹیلٹی سے بچا رہی ہے تو ناٹ بیڈ آئی تھنک.
0: یہ بات تو ٹھیک ہے. آل رائٹ جی, آپ سب سن رہے ہیں پروگرام دا ہائپر ٹینشن لینس اور یہ پروگرام ایٹکو لیبورٹریز اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر راہیلا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ لوگوں تک معلومات فراہم کر رہی ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے, جو کہ اس وقت ہم سب کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. کیا ہم نے اپنا خیال رکھنا ہے, کس طرح اس کو مینج کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر, ابھی ہم جو بھی بات کریں اس میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نمبرز کا خیال رکھیں, یو نو یور نمبرز, سو مجھے بتائیں کہ کیا ہے رائٹ نمبرز, کتنے نمبرز ہمارے آنے چاہیے.
1: اچھا, دا تھنگ از کہ 120/80, جسٹ ریمبر دیز سینٹینس, 120/80 از ویری امپورٹینٹ. اینڈ ڈو ریمبر اوپر والا جو سسٹالک بلڈ پریشر ہے وہ پھر بھی لیلینٹ زون دیتا ہے, لیکن نیچے والا جو 80 ہے نا, دیٹ از ویری امپورٹینٹ.
0: اچھا,
1: ٹھیک ہے, وہ ایکچولی آپ کے ہارٹ کو ریلیکس کرنا اور اپنے ہارٹ کی ہی اس ٹائم فیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, آپ کے بلڈ ویسل اسی ٹائم بلڈ لے رہے ہوتے ہیں ٹو ہیلپ دیم سیلس, تو وہ ڈائسٹولک جو فیگر ہے نا 80, اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں. ہاں, الدو اگر نمبرس ہائی ہیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ اسٹریٹجیز ہیں ٹو گیٹ دیم بیک.
0: اوکے,
1: ٹھیک ہے, لیکن آپ کے جرنل لیول پہ 120/80, ڈو ریمبر دس نمبر.
0: اوکے, یہ تو آپ سب ریمبر رکھیں گے آئی ہوپ سو. اچھا ڈاکٹر, ابھی آپ نے بات کی کہ نیچے کا بلڈ پریشر جو ہے وہ تو 80 سے نہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے.
1: نہیں نہیں, کم اٹس
0: 80 سے بھی کم ہوا تو اٹس فائن.
1: ہاں, زیادہ نہیں ہونا چاہیے,
0: زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے بھائی, تو آپ نے اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے کہ اسے زیادہ نہ ہو. اچھا ڈاکٹر, میں ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہوں گی, بلڈ پریشر نہیں ہے, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بڑا غصہ آ رہا ہے یا آپ کو اپنی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی, تو آپ نے سڈنلی کیا کیا کہ آپ بیٹھے تھے, آپ نے کہا چلو ذرا اپنا بی پی چیک کرتے ہیں, تو اس دوران میں آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت ہائی آیا, پھر کچھ ٹائم بعد آپ نے ایک دو دن بعد چیک کیا تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل آیا, تو جو اس ٹائم پر میرا بلڈ پریشر ہائی آیا تھا تو اٹ مینس کیا میں اب مجھے بی پی ڈائگنوز ہو چکا ہے؟ really wanted to know this.
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ब्लड प्रेशर की एप्रोप्रिएट रीडिंग्स आपको लेने के लिए काम, रिलैक्स सिटिंग पोजीशन, वो आपका एक सेटिंग होती है ना कि आप रिलैक्स हैं, आप काम हैं, यही आपका रूटीन है. क्योंकि ब्लड प्रेशर इज लाइक कंसिस्टेंट समथिंग ना. तो उस टाइम तो एक पीक आई हुई थी कि आप एक एंजाइटी वाले मोड में, एक स्ट्रेस वाले मोड में, लेकिन वो कंसिस्टेंट तो नहीं है ना. आपको कंसिस्टेंसी वाले मोड में, जैसे रिलैक्स हैं, आप काम हैं, उस टाइम आप सिटिंग पोजीशन पे हैं, फिर प्रॉपर आपने एक रीडिंग ली. लेकिन डू रिमेम्बर दिस, सिंगल रीडिंग इज नॉट इनफ. आपको रीचेक अगेन करना है विद द टाइम स्पेस, टाइम गैप. आपने उसको रिलेटिवली दोबारा चेक किया. अगर दो से ज्यादा टाइम्स में आपके ब्लड प्रेशर रीडिंग्स ज्यादा आ रही हैं, दैट डू मीन्स इट इज समथिंग टू डिग आउट. एंड डू रिमेम्बर, हाँ, अगर आपके ब्लड प्रेशर एक्सट्रीम, उस एजिटेशन में भी आपके एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर्स आए हैं, जैसे 200 की रीडिंग आ गई है, 180 अबव रीडिंग आई है, तो आप अर्लीएस्ट उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करें. इवन ऑन द सेम डे, ऑन द सेम मोमेंट, आप कपल ऑफ द आवर्स के बाद आप उसको रीचेक करें कि कहीं वाकई में फैक्टर ऐसा तो नहीं है. क्योंकि दिस इज समथिंग, दीज रीडिंग्स ये आपको टाइम नहीं देती है.
0: बिल्कुल
1: ठीक है. जैसे 200 की रीडिंग आ गई ना, ये आपको ज्यादा टाइम नहीं देगी. ये एक सडन होता है, लेकिन ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है. तो डू रिमेम्बर, उस टाइम आप थोड़ा पैनिक कर जाएं अगर 200 प्लस रीडिंग, 180 प्लस
0: को हल्का मत लें. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है ये. इसीलिए हम आपकी खदमत में ऐसे आगाही प्रोग्राम लाते हैं ताकि आप इन चीजों से सीखें. क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहों पे लोगों के वही पुराने कॉन्सेप्ट सेट हैं. मुझे याद है, मतलब बहुत पहले की बात, तकरीबन आई थिंक 10 साल पहले, जब हम बहुत छोटे थे, तो जब ब्लड प्रेशर की मशीन आई थी, तो इसका ये लोगों ने कहा था कि जितनी आपकी एजेस में 100 ऐड कर दो तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है. सो ये आपने सुना है ना. तो ये वाली जो बात है वो अभी तक बहुत सारे लोग मानते हैं कि शायद जो आपकी एज है उसमें 100 ऐड कर दो तो ब्लड प्रेशर ठीक है. तो ये सब
1: ये सब मिथ है.
0: बिल्कुल ठीक है भाई. तो अगर आपने भी ये बात सोची हुई है तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं ये सोच रही थी, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा भाई 55 है, किसी की उम्र 70 है, तो इतना आ रहा है तो लोग सेटिस्फाई हो रहे थे. तो दिस इज नॉट द राइट.
1: अच्छा, इस पॉइंट, इस प्लेस पे मैं एक और बात कहना चाहती हूँ जो मेरे यंगस्टर्स के लिए है. दैट इज के जो लोग जिम जाते हैं और मेरी यंग लड़कियां, प्लीज डू रिमेम्बर, जो आप एक्सेसिव पाउडर्स ले रहे हैं, आप एक्सेसिव ड्रग्स ले रहे हैं टू मेंटेन योर बॉडी, दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग्स. तो डू रिमेम्बर, आप अपने ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करें, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर बढ़ाकर ही रीनल, यानी हमारे गुर्दे को हिट करती हैं. आप ठीक हैं, आपको महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि ये साइलेंट किलर है. इसलिए तब पता चलेगा जब ये इट इज गॉन. ठीक है, तो काइंडली आप अपने ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करें, स्पेशली जो जिम जाते हैं और उनको एक्सेसिव पाउडर और ये वो देता है.
0: बिल्कुल एग्जैक्टली. और वो रैपिड वेट रिडक्शन के लिए तो लोग सब कुछ ट्राई करने पे तैयार हो जाते हैं, चाहे वो जितने भी एक्सपेंसिव पाउडर्स हैं ऑन हो. बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर ने, और सही कहा कि क्योंकि ये साइलेंट किलर है तो इसका पता नहीं आपको चलेगा, तो इसलिए आपने इसका भी ख्याल रखना है. अच्छा डॉक्टर, अभी हमने किडनी पर बात की, फालिश पर बात की, इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या ब्लड प्रेशर जो है वो आपकी आंखों को भी मुतासर करता है?
1: एग्जैक्टली. अच्छा, द थिंग इज के मोस्ट ऑफ हमारे जो मिडिल एज लोग जाते हैं, वो जाते तो बेचारे आंखें चेक करवाने हैं कि आंखें धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा इश्यू हो गया है. लेकिन वो जो पर्दे पे उनके जो दाग आ रहे होते हैं, उससे पता चलता है कि इनको बहुत क्रॉनिकली ब्लड प्रेशर रह रहा है. आप इससे ये मालूम करें कि आपके आंखों का जो पीछे वाला पर्दा है ना, वो भी इतना ज्यादा इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर से. और ये परमानेंट डैमेज है, ये प्रिवेंटेबल नहीं है. वंस ये डैमेज हो गया, पेपिलो एडिमा हो गई, पीछे वाले पर्दे में सोजिश आ गई, तो फिर रिवर्सिबिलिटी नहीं है. अच्छा। और आंखों के नूर से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है ना.
0: सही बात है.
1: तो काइंडली डू रिमेम्बर, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो एनुअली चेकअप तो लाजमी है आंखों का. ठीक है, अगर हाइपरटेंसिव नहीं है और आपको इंसिडेंटली पता चला है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको रिलेटिवली कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपने कंसल्टेंट से लाजमी शेयर करें कि मुझे आंखों में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं.
0: बिल्कुल ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी आपने गौर फिक्र करनी है. अच्छा डॉक्टर राहिल, मुझे भी बताइएगा कि क्या बुलंद फिशारे खून को रोका जा सकता है? अभी आपने कहा कि रिवर्सिबल है, सो क्या करना है हमें कि हम इसे रोक सकें?
1: अच्छा, द थिंग इज कि देखिए, ये है ना, रोका जा सकता है एक हद तक ना. यू कैन्ट टोटली कंट्रोल इट. इट इज लाइक पार्टनर ऑफ योर लाइफ ना. तो आप उसको कुछ हद तक आप कंप्रोमाइज करते हैं, कुछ हद तक वो आपको कंप्रोमाइज करता है. इनिशियली आप उसको, इनिशियल स्टेज में आप उसको सब्साइड कर सकते हैं. आप डैश डाइट लें, गूगल पे जैसे लिखेंगे डैश डाइट, ही गूगल विल टेल यू होल द थिंग्स व्हाट यू कैन ईट, हाउ इन व्हाट अमाउंट यू कैन ईट. आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करें, पानी पीना मना नहीं है, पानी पिए. मोस्ट ऑफ ये कॉमन सवाल आता है, ब्लड प्रेशर पानी की वजह से होता है, नहीं ऐसा नहीं. हाँ, जहां पर फिजिशियन ने मना किया हुआ है वहां पर आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करने हैं. हकीमी दवाएं, सॉरी टू से, लेकिन ज्यादातर इन पे ना रिसर्च कम हकीमी दवाओं पे हुई हुई है. मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन अगर उनके पास वेल रिसर्च्ड प्रोडक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज के हाइपरटेंशन होता है इन वजह से, तो वो आप लेने से परहेज करें. कोई ऐसी लोकली अवेलेबल जो मेडिसिन आती है टू वेट रिड्यूस या फिर टू बींग मोर एनर्जेटिक, तो ये ना लें. कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें, स्पेशली जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट जो अल्लाह ने दिया है, जैसा दिया है उस पर खुश रहें, इत्मीनान रखें और स्ट्रेस को कंट्रोल करें, क्योंकि इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इन पाकिस्तान, दैट इज अ स्ट्रेस विच इज कॉजिंग ऑल दिस डिसलिपिडीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एवरीथिंग. हमारे यंगस्टर्स देखें कितने डायलिसिस पे हैं.
0: बिल्कुल सही बात,
1: वो कल्प्रिट इज हाइपरटेंशन.
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. और हम हर कोई इस वक्त स्ट्रेस में मुब्तला है, अटेंशन का शिकार है या कुछ ना कुछ है, लेकिन आप इसको भी अगर दूर करते हैं अपनी जिंदगी से तो आप ब्लड प्रेशर से जो है वो दूर और महफूज रहेंगे. तो इस पर आपने करना है गौर व फिक्र. आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम द हाइपरटेंशन लेंस, एटको लेबोरेटरीज और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावन से पेश किया जा रहा है. डॉक्टर राहिला ख्वाजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों तक बेहतरीन मालूमात फराहम कर रही हैं जिससे आपको बहुत फायदा होगा. और ये मालूमात सीखकर आप जरूर लोगों तक आगे भी फराम करें कि आपने क्या एहतियात करनी है, क्या ख्याल आपने अपना करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा डॉक्टर, अभी आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से हम लोगों तक आगाही फराम की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर है, ये क्या तरीकाकार है?
1: अच्छा, मैंने स्ट्रिक्ट नंबर ऑफ 20 बता दी है. अब इसको दो में डिवाइड कर देते हैं. मोस्ट ऑफ फिन तो हाइपरटेंशन इज साइलेंट किलर, खामोशी से जब फाइलेज हो जाता है तो पता चलता है, अटैक हो जाता है तो पता चलता है, वरना नहीं पता चलता. लेकिन टारगेट जो पॉपुलेशन हमारी अवेयरनेस देने के लिए, वो ये जिनको पता ही ना चले.
0: जी जी.
1: तो आप काइंडली अपने नंबर्स चेक करें. ब्लड प्रेशर चेक करना कोई बड़ी साइंस नहीं है, इजीली अवेलेबल इन एवरी स्ट्रीट है. हमारे पास कोई ना कोई क्लिनिक होती है, अच्छे स्टाफ होते हैं. आप उनको एप्रोप्रिएट वे में कहें कि हमारे आप स्क्रीन कर लें, आप ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करवाएं. उसमें मोस्टली वहां पर कैच हो जाता है, मैडम हम तो ऐसे ही बैठे थे मजाक में, मैंने कहा कि मेरा भी बीपी चेक कर दें, ये तो 140 का आ गया, फिर मैं इधर आ गया. तो ऐसे ही कैच होता है. Try to catch them on these kind of incidents. हाँ, जब वो खुद बोलना शुरू करता है तो बहुत बुरा बोलना शुरू करता है. अच्छा, कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसमें स्पेशली नेक पेन, हमें सांस फूलना ऑन एग्जर्शन, जैसे चलते हैं तो सांस फूलना शुरू हो जाती है, या बैठे बैठे नाक में से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, या सुबह उठे तो आंखों में एक रेड डॉट आ गया है, अरे या अचानक से पता चला है कि मेरे अजीब सा दर्द हो रहा है सीने में, डिफ्यूज सा, जो खुद ही ट्रीट हो रहा है तो मैं गया नहीं डॉक्टर के पास.
0: सही बात है.
1: तो ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं. दीज आर द सिम्टम्स. एक होता है साइलेंट, और थर्ड इज जब वो आपको टारगेट कर ले कि अब मैंने बताना है कि मैं ब्लड प्रेशर हूं और मैं आ गया हूं. ठीक है, वो तो बहुत बुरे तरीके से आता है. या तो वो आपको हार्ट अटैक खुदा न खासा फाइलेज की सूरत में, या ब्लाइंडनेस की सूरत में, या फिर यूरिन बंद हो जाता है, पूरी एसिडोटिक पिक्चर हो जाती है. तो इन आखिरी वाली स्टेज से तो बचने के लिए बेहतर है कि पहली वाली स्टेज को हम प्रेफर करें और हम खुद जाएं मालूम करें कि आप हैं क्या हमारे अंदर.
0: सही बात है.
1: राधा ने वो हमें बताया कि हाँ मैं आ गया हूँ,
0: मैं आ गया हूँ. बिल्कुल. तो अभी जो आपने बताया ये तब हो जाता है जब एक्सट्रीम लेवल पर आपका बीपी हाई रहता है. बिल्कुल. सो इन चीजों पर आपने जरूर गौर फिक्र करना है और कोशिश आपने ये करनी है कि अल्लाह ना करे ये नौबत आए ही ना आप पर. तो इसलिए आपने जरूर इस चीज का जो है वो गौर फिक्र रखनी है कि कहीं आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं. सो इसलिए आपको. अच्छा डॉक्टर, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी. अभी तो आपने बताया हमें कि किस तरह आपको पता चलेगा. जैसे अगर शुगर को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए, सो एक टेस्ट होता है HbA1c जिससे पता चल जाता है कि 3 महीने का स्टेटस आपको पता चल जाता है. جاتا ہے. بلڈ پریشر کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا ٹیسٹ ہے یا پھر بس ایسے آپ نے رینڈملی چیک کرنا ہے؟
1: نہیں, بلڈ پریشر از اے ڈیزیز آف دا سسٹم, ڈو ریمبر دس. میں ایک اکیوٹ کیئر کنسلٹنٹ ہوں اور لیٹ می ٹیل یو, سب سے مشکل ہوتا ہے جب اکیوٹ ہائپرٹینسو ایمرجنسی آتی ہے اور اس کا تھورو آپ کو ورک اپ کروانا ہے. دس از فرام یور ہیڈ ٹو ٹو, ٹھیک ہے.

0: केयर कंसल्टेंट हूँ और लेट मी टेल यू, सबसे मुश्किल होता है जब अक्यूट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आती है और उसका थोरो आपको वर्कअप करवाना है. दिस इज फ्रॉम योर हेयर टू टू. ठीक है, तो इसमें आपने कुछ, इसमें से मैं जो मोटे मोटे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन डायरेक्टेड टेस्ट हैं वो आपको बताऊंगी. अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको ये टेस्ट करवाने, अदरवाइज ये रूटीन में बेसिक आपको करवाने हैं. ठीक है, इसमें से तीन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 20, इफ इट यू आर 20, डू रिमेम्बर दीज टेस्ट, HbA1c,
1: ओके,
0: फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल. आई एम नॉट सेइंग लिपिड प्रोफाइल, एप्रोप्रिएट फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, मतलब 12 घंटे आपने, वो भी नॉट हैवी डाइट प्रोसीडेड 12 आवर्स, आपने फास्टिंग की हुई है, इसके बाद आप अपने FLP करवा रहे हैं और सीरम क्रिएटिनिन लेवल. सीरम क्रिएटिनिन तो मैं चाह रही हूं, ये मेरा टास्क है अगले एजेंडाज में, कि मैं सीरम क्रिएटिनिन को, जैसे आप अपना HbA1c चेक करवाते हैं वैसे आप सीरम क्रिएटिनिन चेक करवाएं. ठीक है, ये तीन टेस्ट आप लाजमी करवाएं, और अगर फिर एक्सटेंसिव की तरफ जाते हैं तो LFTs भी आपके साथ एड ऑन हो जाता है.
1: ओके, बिल्कुल ठीक है. सो ये वो तीन टेस्ट हैं जो कि आपने जरूर कराने हैं, जो कि आपसे डॉक्टर राहिला कह रही हैं कि आप इसको जरूर कराएं, ताकि आपको अपना स्टेटस पता चले कि इस वक्त क्या सूरत है,
0: ताकि हमारे पास इनकी लैंडिंग ना हो.
1: सही बात है, बिल्कुल.
0: वी आर द लास्ट स्लॉट ना, कि जब आप हमें देख रहे हैं तो मतलब बहुत बुरे हो चुके हैं ना.
1: सही बात है,
0: मतलब रिलेटिव इवेंट पे खराब प्रोसीजर रिक्वायर्ड, तो उससे मैं चाहती हूँ कि आप बच जाएं, तो ये टेस्ट लाजमी करवाएं.
1: बिल्कुल, तो आप ये टेस्ट जरूर कराएं. डॉक्टर राहिला आपको ही बता रही हैं कि आप यहाँ ना आए, मेरे पास नहीं आए, इससे पहले ही आप लोग जो है वो अपना एहतियात करें और ख्याल रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अब बहुत आम है. और अभी जैसे कि डॉक्टर टेस्ट कर बता रही हैं, तो अब 20 साल की उम्र के बाद से आपने ये सारे टेस्ट कराने हैं, तो आप ये देखें कि दिस इज सो अनफेयर कि अब ये हाल हो गया है कि इतनी कम उम्र में अब आपको, पहले ही हमने सुना था ब्लड प्रेशर जो था वो कोई 60 साल की उम्र के बाद लोगों को पता चलता था या ये है, लेकिन अब किस तेजी से ही फैल रहे. डॉक्टर अभी क्या आप हमें बता सकते हैं कि सर पाकिस्तान कौन से नंबर पर है, क्या स्टेटस है, क्या शरह है?
0: एक्चुअली पाकिस्तान का जो डेटा है वो NDSP वगैरह ने निकाला है, लेकिन लेट मी टेल यू, जो होता है ना आइसबर्ग वाली बात है,
1: जी जी,
0: ये 1 in 4, 1 in 3 इज लाइक समथिंग इवन अनसीन. इवन अनसीन हमारा जो आइसबर्ग की अभी भी जो डेप्थ है ना, वो इससे भी ज्यादा है.
1: अच्छा,
0: इट इज सो एक्सटेंसिवली डीपली रूटेड. हमारे पास, मैं हमारे डॉक्टर्स की बात बता रही हूँ, वन ऑफ अवर ग्रुप वेंट फॉर द टेस्टिंग, और हम डॉक्टर्स 5 थे, उसमें से 4 के लिपिड प्रोफाइल खराब है.
1: अच्छा,
0: तो मैं ये 1 in 4 और 1 in 3 पर मैं बिलीव नहीं करती. मैं लिटरली आपको यही कहूंगी कि हम इससे भी ज्यादा हैं.
1: सही बात है, ये तो बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए. तो बिल्कुल भाई, आपने अपनी जिंदगी में भी थोड़ी तब्दीली लानी है और अपना ख्याल रखना है, और अपने ब्लड प्रेशर को जरूर आप चेक करके रखें, ताकि खुदा ना खास्ता आप इन मुश्किलात का शिकार हों जिनका हमने जिक्र भी किया है. अच्छा डॉक्टर, वी हैव ओनली 2 मिनट्स, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, ब्लड प्रेशर की दवा को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि अपनी दवा लेना छोड़ देते हैं, ये कि अभी तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक आ रहा है, जब भी चेक करो उससे आता है, क्या जरूरत है, 3-4 दिन का गैप लेके खा या नहीं खाते, ये कैसा होता है लोगों के लिए?
0: अच्छा, इसमें सिंपल सेंटेंस है, अगर आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहे हैं और आपने दवाई ली है, दैट डू मीन्स उस दवा की वजह से नॉर्मल आ रहे हैं.
1: सही बात है,
0: प्लीज इस बात को ध्यान में रखें, 120-80 उस दवा की वजह से आ रहे हैं, तो वो दवाई छेड़नी नहीं है. जैसे ही आप छेड़ेंगे अगेंस्ट, वो बाउंस बैक रिबाउंड होगा और एग्रेसिव फॉर्म में आएगा. तो प्लीज दवाई रोज लेनी है, एक दवा, दो दवा अगर आपको मोहताजी से बचा रही हैं, तो आप बहुत सस्ते में छूट रहे हैं.
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है,
0: तो आप प्लीज दवाई ना छोड़ें.
1: ये तो आपका एक अच्छा मैसेज भी हो गया लोगों के लिए. बिल्कुल सही बात है. अच्छा डॉक्टर, आपको एक मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आज हम ब्लड प्रेशर के आलमी दिन पर इस बारे में बात कर रहे हैं.
0: अच्छा, मेरा एक बैकग्राउंड बिल्कुल की मैसेज है, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप मेरी रियलिटी वाली लाइफ देखेंगे, CPRs वेंट वगैरह रिलेटेड, तो मैंने आपको एक बोलते ना, एक सिंपल टिप में पूरी कहानी दे दिए, दैट इज रूटीन चेकअप. रूटीन चेकअप, नो योर नंबर्स, नंबर्स विच नंबर्स, योर वेट. आप कोशिश करें आपके बच्चे से बच्चे में ये रूटीन आदत हो कि आप रोज अपना वेट चेक करें. आपके ब्लड शुगर्स, आपके ब्लड प्रेशर्स नंबर, ये आपको पता होने चाहिए. नो योर नंबर्स, मेक योर लाइफ इजी.
1: बिल्कुल ठीक है भाई, तो आपने इस चीज का जरूर ख्याल रखना है। और आज के प्रोग्राम में डॉक्टर राहिला ख्वाजा ने आप लोगों को बहुत बेहतरीन मालूमात फराम की है जो कि आपके बहुत काम आएगी। तो बिल्कुल इन सारी बातों पर आपने अमल करना है, अपना ख्याल रखना है। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त भी हुआ जाता है खत्म। सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका और आपकी मालूमात का। थैंक यू। और ये

0: जो है जो आप सुन रहे थे हाइपरटेंशन लेंस, ये प्रोग्राम जो है एटको लेबोरेटरीज और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावन से पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम्स आप पूरे हफ्ते 18 मई से 24 मई तक सुनते रहेंगे एफएम 100 पर। तो हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज डॉक्टर,
1: अल्लाह हाफिज।
2: एफएम 100's टाइम चेक, इट्स 3 PM। This program was brought to you by
3: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीत के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीत के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीत से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीत, रिश्ता भरोसे का।
2: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

देखते हुए, हालात को देखते हुए और तमाम तर चीजों को देखते हुए आपने काम करना है। और जब काम आप कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली जब आपकी नीयत बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ है, जब आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब आप परफॉर्मर बहुत अच्छा है, तो लोगों की दुआएं भी आपके साथ होंगी। तो आपकी जो जिंदगी का सिलेक्शन और कलेक्शन होना चाहिए ना, वो यही होना चाहिए कि आप बहुत प्योरिटी के साथ चीजों में लगे हुए हैं, बहुत प्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं। वो के इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स जाते हैं, दोस्ती यारियां सब कुछ सही है, लेकिन सबसे पहले अपना ख्याल रखें और उसके बाद आसपास तमाम तरह जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए आप जो है चीजों को लें। तो जनाब गर्मी बहुत है, वंस अगेन फिर यही कहूंगी, गर्मी बहुत है, जो शौक है आपका वो बिल्कुल सर आंखों पर, लेकिन उसके साथ साथ अपनी हिफाजत भी करें और उस बेचारे मासूम जानवर की भी हिफाजत करें। सिर्फ शौक ये नहीं होना चाहिए कि आपने उसको दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं और उसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं। अपने साथ साथ जिस तरह आज पूरे शो में हमारी बात हुई है कि भाई किस तरह से हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, ताकि ये जो मौसम की गर्मी है और आपकी जो एक्सरसाइज है डेली बेसिस की आजकल के दिनों में, ये खासम खास मेंटेन रह सके। अपना बहुत ख्याल रखें, खासकर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए दुआगो हैं, आपको देख के मुस्कुराते हैं और आपको देख के जिंदा है। अगर ऐसा कोई भी रिश्ता आपकी जिंदगी में है तो आप अमीर तरीन शख्सियात में से एक हैं। बशर्ते जिंदगी इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, बात होगी, और तब तक के लिए इजाजत रखें। अपनी दुआ में एमी खान का हिस्सा जरूर रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।

0: स्मार्ट फोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
1: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
2: 538 शहरों में बैंक अलवीद के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलवीद से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलवीद, रिश्ता भरोसे का। 100 FM।
5: रास्त। आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM247365 FM 100।
6: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
7: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स.

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
4: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive, and chronic disease.
5: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
6: Rast!
7: Rast!
8: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी।

0: in the rhythm of life. Rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on. The music plays on. The music plays
1: on. FM 100's time check. It's 5 p.m.
2: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस

0: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेज और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।
3: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिल एतमाद।
2: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।
4: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
5: नई स्कीम,
6: कमिटी,
4: प्लाट बनाए फरो।
6: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसे डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।

आदि अब सुन मुझको पास आके बैठ कोई चेक कर लो पूरी है जो रेस एटीट्यूड अंग्रेज पर रेस वो ही जीते जो है स्टेडियम स्लो बैम बैम दिल धड़के डर डर के कितने किक करता है हाँ सुन के तेरी सारी कहानी हर शैतानी करता है हाँ

0: Your location for maximum music.
1: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 or 5
7: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
8: نئی اسکیم
9: کمیٹی
10: پلاٹ برائے فروخت
9: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو

0: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।

0: और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
3: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
4: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लेटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से जायद इनामात।
3: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
5: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है।

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।
2: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।
3: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
4: नई स्कीम,
5: कमिटी,
3: प्लाट बनाए फरो,
6: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो। इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसे डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।
8: एक दुनी दो दो दुनी चाहिए इंतखाब के इनामात 2,500।
9: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लेटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से जायद इनामात।
10: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।

0: एक इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
3: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लेटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से जायद इनामात।
4: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
1: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
0: and
2: Har Remittance Par Shandar Inamat Jeetne Ka Mauka Paave.
0: Bank Al Habib, Rishta भरोसे का एंड
3: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा।
5: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद।
6: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
7: नई स्कीम,
8: कमिटी,
9: लाड बनाए फरो।
10: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस

0: इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 24/7/365. FM 24/7/365.

0: टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो.
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: प्लाट बनाए फरो.
5: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो. इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
0: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
6: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500.
7: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात.
8: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.

0: nonstop 3 hours.
1: Wow.
2: Only on FM 100 Pakistan.
3: I just want to party.
4: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस कूलिंग।

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
4: नई स्कीम
5: कमिटी
6: प्लाट बनाए फरो
7: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
2: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
8: ए दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2,500
9: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात
8: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो दो दुनी चार
10: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365
4: fm247365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉक नहीं करता।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या?
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
7: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
7: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: FM247365 FM247365 FM100 31 साल FM100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: your location for maximum music. This is your music.
1: माजी के सुरों से यादों की शमा जलाएं, यादों की शमा

चेन्नई गाने जरा मजा आ रहा था, लेकिन जब ये जो प्रोग्राम होता है इसमें आप पुरानी यादों में खोते हैं, और कुछ लोग वाकई पुरानी यादों में अभी तक जी रहे हैं। उनको कह भी नहीं भाई आगे भी सोचो, नहीं नहीं मैं पुरानी यादों में खुश हूँ। तो मैं उनसे यही कहता हूँ यार पुरानी यादें ठीक है लेकिन आगे कभी सोचें, जिंदगी बढ़ती

0: ओके इसी दौर में रह जाओ, तो जो दौर भी होते हैं वो अच्छे होते हैं। अब आपके ऊपर है, उसको आप कैसे गुजार रहे हैं, अच्छा या बुरा। बहरहाल जनाब ड्राइव करें इत्मीनान सुकून के साथ ड्राइव करें। आज क्लासिक गाने मैंने आप लोगों को सुनाने, पुराने गाने के साथ साथ जरा पुराने गानों को नए अंदाज में भी लोगों ने एक बनाया, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरा दो चार गाने वो भी सुनाऊं कि पुराने गाने आज के दौर में बने हैं तो वो कैसे बने। अच्छा मैसेज करने का तरीका बहुत सिंपल किया है, चार स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर। अच्छा जनाब इससे पहले कि मैं सॉन्ग प्ले करूं, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक तकरीबन 3 मिनट की, बस फिर वापस आते हैं और फिर आपका फेवरेट शो, आपकी फरमाइशें जो आप करते हैं वो मैंने क्यू शीट में बना रखी है। तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: हेलो गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ।
2: पैरों पर खड़ी होगी एक लड़की, जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
6: Active,
7: yummy,
6: adorable,
8: zabardast.
9: ये प्यार तो सुनो यार।

0: सकता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Facebook.com/FM247365
3: Active, yummy,
4: adorable,
3: seven.

भाई जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले 3636 पर सलाम अयाज, सब सुनने वालों को सलाम। उम्मे रुबाब आ गई भाई, सबसे पहले उम्मे रुबाब ने मैसेज कर दिया है, वेलकम कर दिया सबको। चलिए जनाब, रुबाब कैसी तबीयत है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? इसके अलावा बिलावल गिजरी से मैसेज कर रहे हैं, आज भाई आपको, सुंबल जी को और एफएम मंडित के तमाम लिसनर्स को प्यार भरा सलाम। जनाब कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, हाल भी ठीक है, चालें भी ठीक है, लेकिन दुश्मनों की चालें चल रही हैं। और वो क्या चालें चल रहे हैं ये देखनी। अयूब आफरीदी कह रहे हैं, नाइस अयाज, सलामत और खुश रहें सरकार। अयूब भाई आप भी खुश रहें, मैं अकेला बहुत बुरा लगूंगा, सच बता रहा हूँ, आपका खुश होना भी बहुत जरूरी है। तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, गयासुद्दीन बलबन आ गए मुल्तान से और कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, पहला गाना ही इनको बहुत पसंद आ गया भैया। और कह रहे हैं भाई, आज जो है टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री, ओए होए इतनी गर्मी। वैसे मुल्तान की गर्मी नो डाउट बहुत ज्यादा होती है भाई, अपना ख्याल रखना है, पानी वानी ये जरा ठंडी चीजों का इस्तेमाल रखें आप। और इसके बाद संजीदा जी का मैसेज भी नजर आ रहा है। संजीदा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत ही प्यार से वेलकम कह दिया है। और बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते कह रही भाई, दिल जो है खुश, चल रहे खुश रहे बस, मैं ये चाहता हूँ। और इनको भी महनाज का गाना बहुत पसंद आ गया। हाँ सर, आप पुराने पुराने गाने रखे मैं, जिनसे यादें जुड़ी हुई। वेल जनाब, नेक्स्ट ट्रैक के जाने पर खूबसूरत गाना मैडम जी का।

ऐसी है सरकार, गर्मी है लेकिन अल्लाह का शुक्र है स्टूडियो में जरा एसी वेसी फिट चल रहा है और गाड़ी में भी सही है, लेकिन जब आप बाहर निकलते तो जरा तबीयत अजीब सी हो जाती है। बाकी अल्लाह का शुक्र, जब आपका प्रोग्राम सुनता हूं तो 90s के दौर में चला जाता हूं। यार क्या कहने, आज मैं 50s के दौर में ले जाना चाह रहा हूं आपको, और पीछे चले जाओ। अब पता नहीं उस दौर में पैदा हुए भी थे कि नहीं, लेकिन दौर कोई भी हो एंजॉय करना है। हम तो पुराने गानों को सुन सुन के जिस दौर में पैदा भी नहीं हुए वो वाले गाने भी अच्छे लग रहे हैं, जौक होना चाहिए बस। सलाम है आज भाई, बहुत टाइम बाद आपका शो ट्यून इन किया। सरकार कहां बिजी थे भाई, प्लीज प्ले।

किया है जो प्यार तो पड़ेगा नहीं। देखो बहुत दिन बाद किया ना तुमने, गलत है ये रिक्वेस्ट जो नहीं है, ये जो बात है ना गलत है। ट्यूशन बनी हुई वो मैं अब प्ले करूंगा, ठीक है, आपका कसूर नहीं। और कह रही आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माई हस्बैंड, ठीक हो गया नाम, नाम भी हस्बैंड का लिख देते खुश हो जाता, ना अपना लिखा ना हस्बैंड का लिखा, कौन है कुछ नहीं पता। अयूब आफरीदी कह रहे हैं गुलमानो और निघत को ना गुलाब जामुन और आम वाला सलाम। सर आम तो खट्टा चल रहा होगा, गुलाब जामुन मीठा, अजीब कॉम्बिनेशन बना दिया आपने। बिलावल गिजरी जनाब दोस्तों के साथ होटल पर बैठा हुआ नाश्ता, अभी इस टाइम नाश्ता कहां से, डिनर हो रहा होगा यार, और आपका शो सुन रहा हूँ एंजॉय कर, कहां बैठा हुआ भाई, कौन से होटल में नाश्ते चल रहे हैं रात के टाइम, ये किस टाइप के नाश्ते हैं भाई, रात में नाश्ता पहली दफा सुन रहा हूँ मैं। नजम मल्लाह भाई हमें मैसेज कर रहे हैं कैफे प्याला में, लोग कैफे प्याला में भी एक बंदा बैठा और एक होटल पे बैठा हुआ। रियाज भाई कैसे हो, आई होप यू आर वेल, आई एम गुड सर, आप बताएं तबीयत कैसी है, मजे में है कि नहीं।

क्या बात है जनाब, जबरदस्त शायरी है और संजीदा जी भी बड़ी तारीफ कर रही है और रूला लैला वैसे भी इनकी फेवरेट है। अच्छा जनाब अली हसनैन कह रहे हैं याद भाई कराची में मंडी की क्या सिचुएशन है। मंडी की सिचुएशन वही जैसे पहले थी, फुल टाइम रश। अच्छा जनाब अब ये गाना पुराने जमानों का और उस तरीके से ये जो है ना इसकी म्यूजिक अरेंजमेंट सारी इस तरह की गई है, अब अगर होता 2026 में ये गाना बनता तो इसकी साउंड कुछ ऐसे होती, चेक करें जरा। अच्छा दूसरी बात हमेशा मैं कहता हूं मुकाबला नहीं करना, उससे मुकाबला नहीं करना, ये अपना स्टाइल से उन्होंने बनाया।

भाई जनाब सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। और अली हसनैन अयाज भाई कराची में वो बने पढ़ दिया मैसेज शो अच्छा जी कह रहे हैं शो आपको सुनने के लिए सुनता सॉन्ग से कोई शौक नहीं। अच्छा जी बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। बिलावल गिजी से जनाब ईद के शोज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। अभी ईद तो अभी एक हफ्ता है मैं बिल्कुल दे दूंगा। और संजीदा जी आने वाली बड़ी ईद की दो चीजें मुझे बहुत पसंद है, एक आवाम के पीछे भागती हुई बैल, दूसरा बैल के पीछे भागती हुई आवाम। चलें जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल हज का चांद आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा जी अली हसनैन उन्हें बड़ा सियासी को मैसेज कर दिया, कह रहे हैं पिंकी बगैर कुछ किए फेमस हो गई और मैं खर्चा करके भी नहीं हो पा रही। ये जिनके बारे में कह रहे हैं वो मैं ऑन एयर नहीं पढ़ता, बुरी बात है, लेकिन आपकी बात काफी बेहतर है। अच्छा पिंकी ने भी जिस दिन वो कहा ना कि उसका नाम ले रहे थे बनी गाना वाला सीन जो है, उसके बाद से बिल्कुल ठंडा सीन हो गया। उन्होंने कहा आप कोई फायदा नहीं, अब आप कहीं उनकी खबरें नहीं सुनेंगे। अच्छा ये सोशल मीडिया और इन सब चीजों ने ना हर एक को बड़ा तेज कर दिया। अब जो है ना पहले ये चलाकियां चलती थी, अब हर आदमी पहचान जाता कि क्या सीन हो रहा है। और ये पिंकी और पिंके इतने सारे इतने पाकिस्तान में है, ये पिंकियां विंकियां बहुत, असल लोग इनके पीछे हैं, वो मेन लोग हैं, उनको पकड़ना, वो नहीं पकड़े जा रहा है। छोटी छोटी पिंकियों को पकड़ के उनके ऊपर शो करके बस खुश हो रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। अब इतनी महंगाई चल रही है इस पे जिक्र करो, पिंकी को हमने क्या करना, पिंकी ने तो बना लिया जो पैसे बनाने थे भाई, पिंकी ने जो पैसे बनाने थे वो बना लिए। अब ये जो बेचारी आवाम पिंकी बनी घूम रही है गुर्बत से, इनका सोचो यार, इन पे प्रोग्राम करो बिठा के, ये महंगाई सबसे अजीम मसला हो गया, इसका जिक्र करें। तो ऐसे मुझे बिल्कुल फालतू लगता है ये जो आपके जो न्यूज चैनल अब जो प्रोग्राम कर रहे हो, बिल्कुल फारे कोई वो नहीं है आवाम की फिक्र। अच्छा शो इज गोइंग वेरी वेल अयाज भाई, कैफे प्याला कब आ रहे हैं? आने की जरूरत ही नहीं, वो मेरा भाई अभी इमरान भाई आए, बड़ी मजे की चाय बना के देखे चलेंगे। लेकिन आपके दावत का बहुत शुक्रिया, कह रहे हैं आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सर मैंने बिल्कुल रिप्लाई कर दिया, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, आपने पीनी है चाय? साबिर भट्टी कह रहे हैं आज भाई आज तो पहाड़ों पे चढ़ जाओ या प्लीज सॉन्ग, आज देखो ना फिल्मी गाने, आज पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगे भाई, पहाड़ को हमने साइड पे रख दिया, हमने कहा ना पहाड़ पे नहीं भैया। अच्छा अपना अफरीदी भाई अयुब भाई गाना जब भी ये वाला नजर आता है मुझे आप याद आ जाते हैं, थोड़ी सी देर में मैं प्ले करता हूँ इसको, लेकिन जब ये गाना मैं प्ले करने जाता हूँ ना अयुब अफरीदी मुझे याद आते हैं, क्योंकि इनके हालात के ऐन मुताबिक चल रहा है ये गाना। अच्छा भाई गयासुद्दीन बलबन क्या कहने क्या जबरदस्त मैसेज किया उन्होंने, वालेकुम सलाम हुमा सिद्दीकी, वालेकुम सलाम कैसी हैं आप? ठीक हैं, तबीयत सब सेट है? गयास कह रहे हैं कि फुल कर दो भाई, ये अल्फाज अब गाड़ी के टायरों की हवा भरने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। वाह वाह वाह वाह वाह क्या खूबसूरत बात कर, पहले बड़े फरौनियत के साथ है फुल कर दो टैंकी, अब तो टैंकी पानी की नहीं फुल हो रही, पानी के टैंकर भी इतने महंगे आ गए।

0: खूबसूरत बात है। पहले बड़े फरौनियत के साथ है फुल कर दो टैंकी, अब तो टैंकी पानी की नहीं फुल हो रही, पानी के टैंकर भी इतने महंगे आ गए। अयासुद्दीन बलबन आपको तो पता ही है। खोकर एक जात भी है। अच्छा जी चले जनाब, वो खोकर फैमिली। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अच्छा जनाब, बेहतरीन कोशिश हुई है नया अंदाज पुराने गानों को गाकर। हाँ तो ये होता है, जरा चेंज वेंज भी हो, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन सुनना तो चाहिए ना भाई। है क्या कर क्या रहे हो भाई तुम लोग। अच्छा जी कहने, आज तो शोर में पिंकी की, अब यही तो मैं कह रहा हूँ, महंगाई के असल काम है ये, इन पे शोर करना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अली हसन भाई न्यूज चैनल कोई देखता ही नहीं। हाँ वैसे फाकी में यार, कभी कभी ऐसे बंदे का इत्तफाक होता है, देख लेता बंदा, लेकिन उनको देख के मुझे अफसोस होता है यार। ये लोग देखो लिफाफा पकड़ के बैठे हुए आराम से, इनकी जिंदगी सेट है, इनके पेट्रोल भी डल रहे हैं, इनके घर में सब चीजें बेहतरीन हो रही हैं, लेकिन जो बेचारा आम मिस्कीन आदमी है, बेचारे धक्के खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पहले जनाब टाइम टाइम की बात है, और टाइम मैं आपको बताता हूँ कि कितना खतरनाक है।
1: FM 100 टाइम चेक, इट्स 10 PM। This program is brought to you by
2: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान।
3: एक्टिव यम्मी डॉरबल जबरदस्त,
4: ये प्यार तो सुनो यार।

में जना वेलकम बैक। और नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज मैडम नूर जहां की, और क्या गाना था अपने वक्त में। आप सिद्धि भाई आपको डेडिकेट नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ही उधर गौर से सुने आप ये क्या कह रहे हैं।

हुआ जी। उमा सिद्दीकी कह रही है कि भाई जबरदस्त प्लेलिस्ट सुन रही हूँ सुकून से। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। पुराने गाने पसंद आ रहे हैं, नया वाला कह रहे हैं भाई सही नहीं है, हम एक होकर ठीक हो गए। अच्छा जी, अयूब आफरीदी कह रहे हैं, आज भाई अच्छा सॉन्ग, गुड अयूब भाई, लव यू। सॉन्ग लाजवाब है, कोई पंजाबी सॉन्ग भी ला लो। अच्छा जी, मैं ला लेना, होने ला लेना मैं, बल्कि जरा मैं नए अंदाज वाला वे सब तू सोने वो मैं अभी थोड़ी देर में लगाता हूँ और आप ही को डेडिकेट कर देता हूँ। अरे संजीता जी, बस हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, मैं यही चीज मुझे चाहिए। दो घंटे जो है मजे के गुजरे, गयास भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं फुल टंकी वाली बात पे। अच्छी बात भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की आपने। पहले वक्तों में होता था यार, मैं एक बार बताऊं, 5-5, 6-6 हजार रुपए के पेट्रोल डल रहे हैं, लेकिन फील ही नहीं हो रही टैंकी को कि भाई उसमें पेट्रोल जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये तोले वाला हिसाब तो नहीं हो जाएगा, सोना होता है इतने ग्राम तोले, पता नहीं क्या जी, पेट्रोल भी ऐसे ही होने वाला थोड़ी, और तोहफे में गिफ्ट में होगा भाई, पेट्रोल दे दो तोहफे में। सीरियसली मैं आपको बताऊं, चलते हुए लोग कह रहे थे भाई जान 2 लीटर पेट्रोल ही डलवा दो। ये आज मेरे साथ ये वाक्य हो चुका है दोपहर में। मैंने कहा भाई अगर आपको भी मिले तो 1 लीटर मेरे लिए भी रख लेना। मैंने कहा मुंह से तो तुम अमीर लग रहे हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी भी मेरी तरह, लेकिन भाई हालात ऐसी चल रहे हैं सबके। भाई चलती गाड़ी में मोटरसाइकिल चला रहा बिल्कुल बराबर आके कह रहा भाई जान 2 लीटर पेट्रोल। भाई मैंने कहा चलती गाड़ी में से तू फकीर हो गया, ये पहली दफा इस तरह की मैंने फकीरियत देखी है। बंदा गाड़ी रोकता है तो फकीर आता था, ये वाला दौर था, फैशन था। अब मोटरसाइकिल पर चलता हुआ आके कह रहा भाई जान 2 लीटर डलवा दो यार पेट्रोल। मैं तो सुन के और देख के हैरान हो गया यार, ये नया वर्जन है। अयूब भाई कह रहे हैं, आज भाई आंसू बहा के कौन सो सकता है। एक आदमी आफरीदी नाम है उसका, मैं नाम नहीं ले रहा। अयूब भाई इस सॉन्ग पर रोने की बजाय हंसने को दिल कर रहा है, फिर भी फिट है जा। चले जनाब एंजॉय करें आप। शहजादी जी, फरीन शहजादी आपके लिए, हालांकि बंदे के लिए होना चाहिए लेकिन मैंने आपको डेडिकेट कर दिया।

मधिया मैसेज कर रही, मधिया जी क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से है? क्यू शीट पसंद आ रही है, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, सब लिसनर्स को सलाम भी कह दिया, वालेकुम अस्सलाम। जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने

जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे हैं फिर 100 और साथ ही साथ मैसेजेस के सिलसिले भी जारी हैं। आयशा जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, खैरियत से? इतनी सारी दुआएं देती हैं आप आयशा, खुश रहे आप यार, कितने अच्छे लोग हैं यार, कसम से दिल खुश हो जाता है मेरा। मैं यहाँ आता हूँ ना तो सारी थकन वकन सब उतर जाती है, इतना प्यार इतनी मोहब्बत से आप लोग मैसेज करते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, गयास कह रहे हैं इंडिया में 4 साल बाद 3 रुपए बढ़े तो काफी आवाम सड़क पे एहतजाज करने आ गई। अबे भाई ये देखो, भूखी नंगी कौम है, 3 रुपए पे इतना शोर मचा दिया उन्होंने। अपने देखो पाकिस्तानी, 200 रुपए बढ़ गए, कोई फिक्र नहीं, टेंशन नहीं है भाई, इतना माल है, इतना पैसा है हमारे पास, ये होती बात। इसके अलावा कह रहे हैं पेट्रोल प्राइस 97 से 110 रुपीज तक है डिफरेंट स्टेट्स में, क्या बात, इतना सस्ता गरीब लोग। पेट्रोल महंगा करो कुछ, पैसे वैसे नोट वोट बनाओ। अच्छा जनाब, संजीदा कह रही है नाहिद अख्तर की भी आवाज शुरू दिनों की, सब कुछ खुदा से मांग लिया। अच्छा जी, जवानी की आवाज लग रही है भैया, है ना जी? पुराने गाने जवानी के दौर के थे तो जाहिर अच्छे ही होंगे, और उनकी आवाज भी अच्छी। जब भी उनका नाम नाहिद अख्तर बना, मैडम नूर जहां बना, मेहंदी हसन बना, ऐसे थोड़ी बन जाता। अब तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई मेहंदी हसन निकले, कोई नाहिद अख्तर आए कोई, लेकिन हराम है ऐसा क्यों। अच्छा जनाब, अयूब आफरीदी कह रहे हैं अयाज भाई आप भी हमें पसंद हैं और आपकी क्यू शीट भी अच्छी है और आपका शो बहुत बहुत अच्छा है। हाय बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और ये जो गाना ना मैं अपनी तरफ से आपको डेडिकेट करने जा रहा हूँ अयूब आफरीदी के लिए, और वो है कैसे।

right, जनाब वेलकम बैक। और क्या कहने नताशा, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े दिनों बाद कहनी मैंने मैसेज किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैसेज बड़े दिनों बाद मुझे नजर आ रहा है और हमेशा की तरह एनर्जेटिक शो, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सब सुनने वालों को सलाम, वालेकुम सलाम, सलाम कैसे हैं सबको, सलाम भाई। नजर इन्होंने भी सलाम भेज दिया। अयुब अफरीदी, अयाज भाई, मुझे और गुल मानो को आपका शो बहुत अच्छा लगता है। मुझसे मसरूफियत की वजह से कभी मिस हो जाता है, लेकिन गुलमानो ने शो को मिस नहीं कर दिया। अच्छा जी, गुलमानो जी आपका बहुत शुक्रिया। अगर ऐसा है तो अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जानिब से। अच्छा, पहले वक्तों में जरा खतों किताबत होती थी, तो गाने भी खतों पे बनते थे, तो खत वाला सीन ही ऑफ हो गया है।

है जनाब और बिलावल गिजरी से जनाब आज दिन काफी कूल था। अच्छा एसी में बैठे होगे ना जब भी कूल लग रहा होगा। संजीदा जी क्या कहने गाना पसंद आ गया है और हाँ पहले हिना भाई भी समझो किसी औरत का नाम है लेकिन बाद में पता चला मेहंदी है भाई और गाना कह रहे हैं मध्यम सा प्यारा सा सॉन्ग मैडम की आवाज। बाकी शायद भी कमाल है वैसे ये बात मानने वाली। और मिसेस फारूक आ गई थी। वालेकुम सलाम मिसेस फारूक कैसी हैं आप? ठीक है खैरियत से हैं? और कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी मैसेज लेट करने पर कोई बात नहीं हमने कौन सी क्लास लगाई हुई है मिसेस फारूक जब दिल करे आप मैसेज कर दिया करें लेकिन कह रही शुरू से सुन रही ये अच्छा है ये अच्छी बात है शुरू से बस सुने सही मैसेज आपका जब दिल करे आप कर लें। अच्छा जनाब और फरहीन क्या कह रही है? फरहीन कह रही है हाय मेरा फेवरेट सॉन्ग चले जनाब। मैडम जी के तो सारे गाने हैं हमारे बड़े फेवरेट होते हैं। अच्छा जनाब टाइम स्पीड से गुजरता चला जा रहा है 10:38 हो गया टाइम और एक बड़ा 50s के दौर का 60s के दौर का गाना याद आ गया। अच्छा ये 50s और 60s का म्यूजिक भी अपना स्टाइल का होता था।

0: एक मिशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकें। आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। एएनएफ का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365.
2: Active, yummy, adorable, zabardast. Ye pyaar to suno yaar.

भाई जी उम्मीद रुबाब कहनी भाई बहुत अच्छा शो है आप जी सलामत रहे थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया लेकिन टाइम स्पीड से गुजर रहे हैं और इतने सारे सॉन्ग अभी रह गए लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बातें कम सॉन्ग भी पूरे पूरे नहीं थोड़े थोड़े सुनाते हैं।

और मैं जनाब इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त हो रहा है अब खत्म। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा पामान।

0: पाकिस्तान। मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो सुनो
1: हबीबी।
0: म्यूजिक ट्विस्टर में कहूंगा आपको खुश आमदीद। आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक, और एक बजे तक करेंगे खूब हल्ला तेगुल्ला। इस हल्ले गुल्ले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 बार। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी करें, मेहरबानी होगी। कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूं मैं और आप दे रहे हैं उसका जवाब। लेकिन उससे पहले आपको करता हूं मैं वार्म अप करने के लिए चलता है गाना। तैयार जी, पहला गाना इसमें उस चीज का जिक्र है जो जिसकी कीमत आजकल आसमान से बातें कर रही है। फिलहाल एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने सोने दी चूड़ी हाय हाय। एक चूड़ी की कीमत कम से कम मेरा ख्याल है 50,000 तो होगी कम से कम। नहीं यार 50,000 की भी नहीं होगी, अगर आधे तोले की भी आ जाए तो 2 लाख 2 लाख रुपए ओए होए होए कितो ले आएंगे भाई। हैं जी ते हैं जी। बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस के जानिब। सबसे पहले फीता काटा हमारा यूसुफ भाई ने पापोश से। एफएम यूनिट की तमाम फैमिली को और आंटी को चाची को रूसा को गुलमानों को तमाम डॉक्टर्स को इमरान भाई को कदाब लाला को कुरान भाई को और मेरे वाले साहब को उन्होंने सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम। अयूब बापरे दी भाई आ गया यार जन जिगर ये हरी भी सलामत रहे खुश रहे। तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। अभी एक और इनका मैसेज आएगा उसमें चंद नाम आएंगे। सलाम कैसे हैं वाले साहब चाची संजू और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है जरीन नूर ने। जरीन नूर कैसी हैं आप? ठीक ठाक ही तबीयत कैसी है आपकी? ओके अच्छी बात है। अली मोदिन यूसुफ जई साहब आ गए हैं और क्या कह रहे हैं भाई उनका पहले मैसेज मैं पहले ही पढ़ दूं ताकि इनकी मतलब वो नाराजगी ना रहे। भाई बुजुर्ग हमारे अनमोल मोती लाए हैं सलाम के बाद कह रहे हैं कि पहला मोती इंसान उन खूबियों की वजह से दूसरे लोगों से ज्यादा इज्जत पाता है। इन खूबियों की वजह से पहली खूबी क्या है? सलाम करने में पहल करना, किसी को भरी महफिल में अपनी जगह देना, हर किसी शख्स को अच्छे और पसंदीदा नाम से पुकारना। अबे इधर आवे वाह भाई वाह। बजाहिर ये छोटी छोटी बातें हैं मगर ये असर बहुत गहरा छोड़ती हैं। भाई क्या बात है। दूसरा मोती अगर किसी शख्स को परखना है तो देखो उसके दोस्त किस मेहार के हैं। परखने वाला जो है किसी को परखना है वो खुद ही यानी कि समझ रहे हैं ना बहुत आला जर्फ का हो तो फिर क्या परखे भाई दोस्तों को छोड़ दो भाई। खिताब गुल्लारा नसीम कुरैशी और समी शेख इमरान रियाज अयूब आफरीदी और आपके वाजिब उल एहतराम वालिदे मोहतरम की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा। हर नमा दुआ को अली मुद्दीन यूसुफ जई साहब एफ बी एरिया कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लेकिन अली मुद्दीन साहब ये बात सही है सलाम सलाम करने में पहल करना। वाह वाह वाह। आप यकीन मानिए कि एक वक्त था हमें अपना बचपन याद है भाई पक्का पक्का अपने से उम्र से बड़े लोगों को देखते ही खुद ब खुद मुंह से निकलता था अस्सलाम वालेकुम। जान न पहचान माए तेरा मेहमान न जाने न पहचाने फिर भी सलाम कर देना। कुछ लोग जवाब दे देते थे कुछ नहीं देते। जो जानने वाले होते थे वो कहते थे वालेकुम अस्सलाम और जो जान पहचान वाले नहीं है ऐम ही बड़े कोई गुजर रहे हैं तो कोई जवाब दे देता था कोई नहीं दे देता लेकिन हम सलाम करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे आप गुजर रहे हो तो वो घूर के देख रहे होते हैं बस ये आप गुजर गए। उस वक्त दिल क्या करता है यार एक चमाट अगर लग जाए मगर ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन खैर ये बच्चों का कसूर नहीं है मेरी नजर में फिर वालिदैन का कसूर है। और दूसरी बात क्या की थी किसी को भरी महफिल में जगह दे देना कौन सी जगह ये जरा मेंशन कीजिए दिल में जगह देना या कुर्सी पे जगह देना। देखिए कुर्सी की जगह देने से पहले अगर खातून हो ना तो कुर्सी की जगह देने से पहले दिल में जगह दे देता आदमी आइए बैठिए प्लीज आपकी जगह है भाई आपकी कुर्सी यानी कि आप किसी बातें कर रही मेरी प्लीज। अच्छा हर शख्स को अच्छे और पसंदीदा नाम से पुकारना। पसंदीदा नाम और अच्छा नाम क्या है जनाब? वो है आपका जो आपके वालिदैन ने किसी बुजुर्ग ने रखा हुआ है नाम जैसे मेरा नाम नदीम है ठीक है ना। लेकिन फैशन निक नेम ओह माय गॉड मेरा एक है कजन है उसका नाम जमशेद है उसको जॉनी जॉनी कहते हैं जॉनी। उसके भाई को जिमी कहते हैं उसके एक और भाई को टोनी कहते हैं टोनी पपो। अब आप सोचें और वो इस नामों से खुश होते हैं यकीन मानिए असली नाम नहीं लो भाई। खैर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है देखें आप कैसे लोग हो गए भाई। अली मुद्दीन साहब आपकी मोतियों पर मैंने कितनी चर्चा कर दी है एक से एक मोदी था आपका वैसे। नौरीन तौसीफ मेरी प्यारे सी बहन फैसलाबाद से आ गई कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज हैं? ढेरों सलामती की दुआएं। नदीम भाई, जुमे का शो सुनते सुनते मैं सो गई थी। हाय सो स्वीट। सवालात के जवाब नहीं सुन सकी, क्या जवाब थे बताइए? सवाल क्या था मुझे ये याद नहीं है। मैं तो एम ही सवाल कर लेता हूँ, उसका जवाब भी बता देता हूँ। अभी मेरे जहन में कुछ आ नहीं रहा, इसलिए मैंने किया ही नहीं। तो मेरी बहन है, मैंने सवाल क्या किया था, मैं आपको फौरन जवाब दे दूंगा। तमाम प्यारे प्यारे लिसनर्स को सलाम और ढेरों दुआएं, आपको भी ढेरों दुआएं। यार क्या नींद आती होगी यार, ये बड़ी मजेदार किस्म की चीज है। मतलब मुझे तो याद भी नहीं है कि कभी ऐसा मेरे साथ हुआ था। वो ख्वाब ही रह गए कि अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुनने या गाना सुनने सुनते सुनते सो गए। कितने खुश नसीब लोग हैं यार आप लोग, आप लोगों को नींद आ जाती है। एक आ भरी है मैंने, क्या कहूं मैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, आपकी मैसेज की जहानी भी एक मैसेज और पढ़ेंगे, उसके बाद आपको लेके जाएंगे एक अदद ब्रेक की जाने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नदीम सर क्या हाल है? आज अस्मा हसीन के शो में आपका बहुत याद, आपको बहुत याद किया था जी। हमें खबर मिल गई थी अस्मा की जानिब से कि एक मुश्की वहां पहुंची हुई है, वहां पर भी खुशबुएं फैला रही है और उन खुशबुओं में हमारा नाम यानी कि हमारा जिक्र भी हुआ। जरा नवाजी है आपकी कि आपने जिक्र किया। और अस्मा खुद बहुत जबरदस्त आर्जे हैं, नो डाउट, हमारी बहुत प्यारी सी बहन है। जाएंगे एक ब्रेक की जानेब और आपके मैसेज को मुश्किल आगे बढ़ाएंगे।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365
0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। मुश्किल का मैसेज पढ़ रहे थे जनाब, आपकी तबीयत कैसी है? बाहर का मौसम कैसा था? बाहर का मौसम तो अच्छा ही है, इंसान के अंदर के मौसम की हाल से बात करें। आप क्या बाहर का मौसम जैसा था सबको पता है, आपका अंदरूनी मौसम कैसा है ये बताइए। वक्त की रवानी बदल देती है जिंदगी की ये सभी रंग, कोई चाह कर खुद को लिए उदासियां नहीं खरीदता। हाय हाय हाय हाय, बाबा बाबा क्या बात की। गोल तो वाकई आसमान को छू रहा है, जिन्होंने बहुत पहले बनाया है वो फायदे में है। और नदीम सर एक चमार मेरी तरफ से भी

0: like us on facebook.com/FM247365.
1: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। मुश्किल का मैसेज पढ़ रहे थे जनाब, आपकी तबीयत कैसी है, बाहर का मौसम कैसा था? बाहर का मौसम तो अच्छा ही है, इंसान के अंदर के मौसम के हवाले से बात करें। आप क्या बाहर का मौसम जैसा था सबको पता है, आपका अंदरूनी मौसम कैसा है ये बताइए। वक्त की रवानी बदल देती है जिंदगी की ये सभी रंग, कोई चाह कर खुद को लिए उदासियां नहीं खरीदता। हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह, क्या बात की। गोल तो वाकई आसमान को छू रहा है, जिन्होंने बहुत पहले बनाया है वो फायदे में है। और नदीम सर एक चमाट मेरी तरफ से भी ये 100% है, लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। मोहब्बत अलविदाई लम्हात में ही तो इंसान की रूह को महसूस होती है। ओए होए होए यार, ये बहुत गहरी बात है भाई, मैं आपको इसके हवाले से बताऊंगा भाई। लेकिन अभी मेरा मूड हो निराश ही है, वरना तमाम उम्र हम फैसला ही नहीं कर पाते और कर रहे होते कि मोहब्बत है भी कि नहीं, ये भी फैक्ट है। ओके ठीक, बात की मुश्किल के साथ रहते हैं वो आपके अपने नहीं है, तो क्या आप उनके साथ रहना चाहेंगे या नहीं? भाई जिनके साथ हम रहते हैं ना, वो हमारे अम्मी अब्बू बहन भाई होते हैं शादी से पहले, कोई शादी के बाद सिर्फ आपके बीवी बच्चे होते हैं, तो आप कौन से अपनों की बात कर रही हैं? तो जाहिर रहता इंसान इन्हीं के साथ है, तो कौन शक करेगा अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ? आप पुप्पी मामी चाची ताई है तो फिर उनके साथ नहीं रहना चाहिए, यानी कि समझ रही है ना। तामीर भाई कह रहे हैं, आ गए हैं भाई तामीर साहब, तामीर अली कह रहे हैं सलाम नदीम भाई जान, प्रोग्राम आला है तवाजो सही, तवाजी मेहरबानी सही, बेओ चाल आए सही, बेओ बताया सही। और रेहान कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ भाई जान, आज रिकॉर्ड नहीं कर रहे भाई, रिकॉर्ड भी तो करो, तुम तो रिकॉर्ड भी करते हो। अरे इतने सारे मैसेज और ये हाँ एने सुने हो, मैं तीनों की मैं तुहानू की दसा जीते रहे जीबीएन को गुलाब जामन और चौसा आम को भी सलाम। अयो भाई यार मेरा मुंह में पानी आ गया है, आम तो फुल टाइम, आप काफी दिनों से आमों के पीछे पड़े हुए हैं, बस कर दे, आमों की भी बहुत सारी किस्में होती हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, सभी जानती हैं। अरे हाँ सवाल ही कर देते हैं, आप लोगों ने ये बता रहे हैं कि आम पाकिस्तान में आम कितनी किस्म के पाए जाते हैं? महानूर के इतने सारे मैसेज। अनायतुल्ला जलबानी साहब कह रहे हैं सर की हाल है थोड़ा असैया के टेक, जलबानी साहब आप कैसे हो? आय हाय हाय अलजी आ गए हैं उम्र बाद भी, आज तो सब जल्दी जल्दी आए हैं क्योंकि हयाज भी आए हुए थे ना। नदीम उम्र रुबाब सलाम आपको और सबको, शुमा खूबी जिगर हाल खूब आश्री जिये। और मानूर का ये वाला मैसेज मैंने पढ़ लिया था, तामीर भाई का भी पढ़ लिया था, और कौन आ गया भाई? अच्छा भाई अयूब आफरीदी भाई कह रहे हैं जिगर माहीन और निगहत और जीबीएन को कोई अपनी मर्जी का सॉन्ग, मैं अपनी मर्जी का क्यों करूं, पहले तो ये बताए। और महनूर के नाम पश्तो का सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, बिल्कुल कर देंगे, मगर मैं अपनी मर्जी का क्यों करूं, कोई अच्छा सा बोल देंगे यार गाना आप डेडिकेट कर दें, आपकी जानिब से होना चाहिए ना, यानी ये समझ रहे हैं ना आप। और एम जे इज हेयर और कह रही है सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, शो अच्छा है आपका हमेशा की तरह, सलाम सबको उन्होंने कहा, वालेकुम अस्सलाम। इरफान अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप, सब सुनने वालों को सलाम और हम सब

केले सिंधी है सॉन्ग हम सब के लिए। अच्छा के लिए को लिखा हुआ केले केले सही तवा जिला सिंधी सॉन्ग सही बिल्कुल चलेगा सही। किस बात करता है सही इरफान भाई। अच्छा जी आई एम मरहा शाह नाथवा मरहा कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम माय फेवरेट आरजे नरीम अख्तर हाउ आर यू। सबको बोलो नेक्स्ट नाथवा को वेलकम करें। सबसे पहले तो हम खुद कर रहे हैं भाई आपको वेलकम टू द शो। और कहती हैं के बोले वेलकम कर दें। और मुझे संजू साहिबा बहुत पसंद है। आई एम साइलेंट लिसनर आपकी वाइफ आपका शो क्यों नहीं सुनती। बच्चा घर की मुर्गी दाल बराबर। रेडियो पसंद नहीं है या कोई और रीजन है। कोई रीजन नहीं है घर की मुर्गी दाल बराबर बस यही है। अच्छा हमारे रिश्तेदार आकर बोल रहे होते हैं मतलब रिश्तेदारों के रिश्तेदार आके बोल रहे हैं हाय मैं इनको शो सुनती हूँ इतना अच्छा अच्छा आने सुनती नहीं सुन रही क्या करें भाई रीजन उनको जब भी टाइम मिलता है वो सो जाती हैं नींद बड़ी प्यारी है। और आसिफ अली आ गया ही। आसिफ कैसा है तुम सलाम टू यू एंड ऑल लिसनर सर कैसे हैं आप। जरीन नूर और तारिक रोड वाले अब्बास भाई गायब हैं आजकल। अब्बास भाई को सॉन्ग डेडिकेट कीजिएगा। अच्छा वो आसिफ तुमने याद दिलाया गुड है। भरपूर तरीके से आप लोग फुल टाइम चल रहे हैं तो अब मेरा ख्याल है चले एक मैसेज और पढ़ ले। अयान कश्मीरी आ गए हैं। अयान तुम फिर आ गए। असूले मोहब्बत में तुम खुद ही बेवफा हो। अयान तुम तो बड़े नाराज थे मुझसे लेकिन खैर वेलकम कहेंगे आपको। कह रहा है कि असूले मोहब्बत में तुम खुद ही बेवफा हो वो जो बिछड़ा तो तुम मर क्यों नहीं गए। मरना तो है खुदा के हुक्म से। असूले मोहब्बत में एक नाम इंतजार भी है। इंतजार तो उनका किया जाता है जिन्हें वापिस आना हो। जो खुद गर्ज हो उनके लिए मेरा उनके लिए मरा नहीं करते। वाह वाह वाह वाह वाह भाई भाई अयान कश्मीरी भाई तुम तो बहुत ओके टेक किस्म के शायर निकले। तुम्हारा दिल दुखा हुआ है भाई तुम्हारी शायरी से फुल टाइम लग रही है। अरे शमी भाई क्या कहते शमी भाई ओके शमी भाई तमाजो गानो चलाएंगे सही डोंट वरी। फिलहाल तो हम एक गाने की जानिब जा रहे हैं और ये ट्रैक हम मुश्की का बड़ा अच्छा मैसेज है मुश्की आपको डेडिकेट करते हैं। एल्लो फड़ो मैं माही आ जा।

0: us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365. Music Twister.
2: The music.

वेलकम बैक कहेंगे सो आप सबको। वे माही आजा, वे आजा, वे आजा। आम की कितनी किस्में हैं भाई पाकिस्तान में पाई जाती हैं, ये आपने बताना है। गुफरान अभी है नहीं, वरना वो जरूर इस पर कोई ना कोई शरारती बात जरूर करता। आप भी कर सकते हैं अगर चाहें कोई शरारत। बाब मुझे कुछ दिन पहले पता चला है कि मैं जिसके साथ रहती हूँ वो मेरे अपने मामा बाबा नहीं है। हाय अल्लाह जी। अच्छा जी, अब आपको मैं एक बात बताऊं मानूर, मेरी एक बात सुनना, गौर से सुनना। सबसे पहले ये बताओ कि आप जिनके साथ रहते वो आपके मामा पापा नहीं है, ठीक है, आपको पता चल गया। लेकिन आप ये बताएं कि उनकी मोहब्बत में, शफकत में कोई कमी थी, सौतेलापना था, कोई कराहत थी, तरबियत आपकी अच्छी नहीं की, माँ बाप का प्यार नहीं दिया, तो समझ में आता है। और अगर ऐसा नहीं है, उन्होंने वालिदैन होने का सबूत दिया, अपने बच्चों की तरह आपको पाला पोसा, बड़ा किया, समझ दी, तरबियत अच्छी की, तो पालने वाले का भी रुतबा उतना ही होता है जितना पैदा करने वाले का है। समझ आ रही है मेरी बात? पालने वाले का भी रुतबा वैसे ही है। अगर आपको पता चल गया है तो जिसने बताया है ना उसकी बात एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। आपकी जिंदगी में हलचल मचाने के लिए इस तरह के बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको इस तरह की बात कहते रहेंगे। चलो आपको ये हकीकत पता चल गई, कोई मसला नहीं, उन्होंने पाला तो है ना, बड़ा तो किया है ना, गलत काम से रोका है ना, अच्छे काम का बताया है ना। और अगर ये तमाम चीजें नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है। एक अच्छा भाई, मैं इरफान भाई, जब भी चुटकुला भेजो तो ऐसा भेजो कि मैं FM पर जो है सुना सकूं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जनाब। अबे आज तो मानूर फुल फॉर्म में भाई, कह रही है बाबू अफरीदी भाई को पिछले स्टेशन पे सोना था, पश्तो शायरी तो आओ क्या है बता बैठे थे, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया मानूर तुम्हारा ये मैसेज। नदीम सर मुश्किल अलग हो आपके शो में वेलकम करते हैं। नदीम सर जावेद अख्तर साहब का कोई सॉन्ग सुनवा दे, सुनवा दो बस के लिए काफी है। ओके अयूब भाई, MJ कह रही है भाई आज अगर हो सके तो गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे का सॉन्ग चला दें। मुश्किल है मेरा बच्चा MJ, उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, कोशिश करूंगा। फरमाइशें पूरी ना होने की कुछ वजूहात है। कोई भी सॉन्ग संजू के नाम और मुझे संजू के सिवा कोई सॉन्ग डेडिकेट नहीं करता। जरीन नूर आपने बिल्कुल सही कहा, आपने गलत कहा, सॉरी बिल्कुल गलत कहा। आपको आसिफ ने, आसिफ क्लिफ्टन वाले, उन्होंने गाना डेडिकेट किया था, कल ही किया था, यानी कि समझ रही है ना आप। ये हम सब फैमिली की तरह है, तो आप भी तो संजू के अलावा किसी को गाना डेडिकेट नहीं करती है ना। मोहब्बत बांटोगे तो मोहब्बत सिमटोगे, यानी कि उम्मे रुबाब के हैं नदीम, मैं भी हूँ, कोई साइन मेरी तरफ आपको डेडिकेट करूँ, सॉन्ग मेरा ख्याल लिखा है, मालूम दिल चाहता है। ओके जी, आपका दिल चाहता है तो आपको सॉन्ग जरूर डेडिकेट करें। सलामत रहो, आप भी सलामत रहें, ता कयामत रहें, हमारी दुआ है आपके लिए। अजय शमी कह रहे हैं ना मैसेज रीड कर रहे, लगता है रिक्वेस्ट भी प्ले नहीं होगी। अरे यार करेंगे प्ले यार, शमी कैसी बातें कर रहे हो यार, ऐसा हो सकता है यार, अभी तुम दूल्हे थोड़ी बने हो। नदीम भाई हाँ मैं आपको बताऊंगा वजह बताऊंगा। ओए होए इनकी उनकी तबीयत ठीक नहीं है यार, आपको इतना याद कर रहा हूँ मैं, आपके मतलब का टॉपिक रखा हुआ है मैंने, आपको आम बहुत पसंद है तो आम जो है मैंने बोला, ये अभी उन्होंने भी ये बोला है, अयूब भाई ने भी, उनको भी चौसा आम बहुत पसंद है, तो मैंने आम

रही होगी, वो आपको किसी चीज से रोकेंगे तो आपको बात बुरी लग रही होगी। मेरा बच्चा, मैं आपको जो बात बता रहा हूं ना, मेरी छोटी बहन हो आप, दिल से ये चीज निकाल दो। अगर उन्होंने किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी हुई तो आप भी कमी ना छोड़ो औलाद होने के नाते। और मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि हमारा दीन भी ये कहता है, पालने वाले का बहुत बड़ा रुतबा होता है हमारी जिंदगी में। तो ये जिसने आप, वैसे एक बात बताओ, ये बात तुम्हें बताई किसने, ये जरूर बताओ मुझे, फिर उसके बाद आगे बात की चर्चा करेंगे। अच्छा भाई, अय्यूब आफरीदी भाई, आपकी शायरी का इंतजार, अब क्या करें, शायरी जो है उनकी हम सुनते थे टेलीफोन पर, मगर पूरे कराची का जो हाल है आप देख रहे हैं कि हर कराची का कोई ऐसा गली, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो उखाड़ी ना हो, तो उसमें जाहिर है पानी की पाइपलाइनें भी फट रही हैं, गैस की लाइनें भी फट रही हैं, बिजली की तारें भी टूट रही हैं, और टेलीफोन की तारें तो पता ही नहीं चल रहा। तो बस ये टेलीफोन की तारें टूटी फूटी हुई हैं, जिसकी वजह से हम आपसे बात नहीं कर पा रहे और मैसेज पर ही फिलहाल गुजारा कर रहे हैं। दादू से अनवर बिताफी भाई सही हमारा आ गया है, कहता है नदीम भाई सलाम सबको, अनवर बिताफी भाई कैसे हैं, इतने दिनों के बाद आए यार, सो स्वीट, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज देखकर। जीते रहें सही, मुस्कुराते रहें, और अनवर बिताफी भाई हमारी सबकी जानिब से आपको और आपकी पूरी कचहरी को सही सलाम, यानी कि समझ रहे ना। गुफरान भाई आपको समी सलाम कह रहे, कह रहे वालेकुम अस्सलाम, कह रहे मैं बहुत दुआ कर रहा हूं, और कह रहे हैं कि तुम्हें आम क्यों नहीं अच्छे लगते, आम खाया करो। मैंने इनको खाया है, मैंने बोला भाभी जब आएंगी, शादी जब हो जाएगी तो आम अच्छे लगेंगे, क्योंकि उनको तो पसंद होंगे, तो वो आएंगे तो फिर ये खाएंगे आम, तो इनको आदत हो। अच्छा, बहुत सारी ऐसे खाने पीने के हवाले से मैं आपको बताऊं कि शादी से पहले और शादी के बाद इंसान की पसंद बदल जाती है, जो चीजें नहीं पसंद होती मजबूरी में खानी पड़ती है, ऐसा है कि नहीं शादीशुदा लोगों, बताओ भाई मुश्किल कहां गायब हो गई, थोड़े से मैसेज करके गायब हो गई मैं भाई। एंड हियर्स कम तानिया हसन जी, तानिया हसन को वेलकम कहेंगे, और थानिया हसन तमाम सुनने वालों को कह रही है अस्सलाम वालेकुम। और और जनाब, पाकिस्तान में हर किस्म की जुबान बोलने वाले आम पाए जाते हैं। सलीम अहमद साहब ने ये जवाब दिया है, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा है सीरियस पूछा है, जैसे कि तामीर भाई ने उसका जवाब दिया है 400 किस्म के आम जो है वो पाए जाते हैं। तो आप बताइएगा यार कितने माशाल्लाह से आप लोगों ने भरपूर देख, पता नहीं मेरे अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, एनर्जी आ जाती है आप लोगों की भरपूर शमूलियत की वजह से। और जनाब, अरे वाह भाई वाह, इतने सारे इरफान भाई, इरफान जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया शो सुन रहे हैं। काशिफ भाई आ गए हैं, कह रहे हैं आप अपना ख्याल रखें भाई, सदा खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। संजू कहां गायब हो, संजू का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, संजू सुन आ रही हूं भाई कहीं। और रुखसार अवान भी सुन रही हैं, रुखसार थैंक यू वेरी मच। हमारी प्यारी सी बहन नसरीन पटेल भी सुन रही होंगी, और उनके साथ साथ तमाम खामोश लिसनर्स को भी हमारा सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, अगर आज लाइव नहीं आए ना तो आपकी खैर नहीं है। ओके जनाब, वैसे आज मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की। और सलाम भाई फरीदा बुरहानुद्दीन, कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक, तबीयत खैरियत से, ओके ठीक है जनाब तबीयत भी। और नौरीन महना क्या कह रही है, भाभी से सर में तेल डलवाया करें, आपके सर में बहुत खुश्की हो गई। मेरे सर में खुश्की हो गई, छींक आते आते रह जाए तो इस आधी छींक का मतलब है कि कोई आपको याद करने लगा था, फिर साथ ही कह दिया चलो दफा करो। अबे बहुत खूब भाई बहुत खूब।
पाकिस्तान में आम की तकरीबन 250 से ज्यादा अकसाम पाई जाती हैं, जिनमें सिंधड़ी, चौंसा, अनवरडोल, लंगड़ा, दुसहरी और फजरी ज्यादा मशहूर हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 250 में सिर्फ 7 मशहूर हैं, बाकी ये बागी वाले क्यों नहीं मशहूर है? बागी क्यों नहीं मशहूर? और जनाब नौमान भाई भी आ गए हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ये क्या लिखा हुआ है? आलन व सहलन मरहबा या हबीबी नौमान बल्लिया, तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से चांद मुबारक हो। और रदी भाई, अरे यार क्या याद दिलाया यार, जबरदस्त। अभी इस हवाले से बात करता हूँ। हमारे अलीमुद्दीन साहब ने दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा कर दिया है। मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं? मिर्जा साहब भी आ रहे हैं, गुज्जर खां तो सलाम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को आदाब तस्लीमात, सोने दी चूड़ी, क्या कहने। वैसे गाने दो ही चले, अभी और भी चलाएंगे हम। और अच्छा भाई ठीक है ना, फरीदा बुरानुद्दीन लाइव आ जाऊंगा, डोंट वरी। और थोड़ा सा बदजुबान हूं मैं तफाक से, ये मानूर तुम भी सुन लो और तमाम सुनने वाले भी सुन लें कि अयूब भाई, अयूब आफरीदी साहब ने एक शेर भेजा है। थोड़ा सा बदजुबान हूं मैं इत्तफाक से, अब क्या करूं, पठान हूं इत्तफाक से, दास यो कहना यार अरोरा, पठान बदजुबान नहीं होता, दिल का साफ होता है, इसीलिए लोग समझते हैं कि वो बदजुबान है कि नहीं। तो अयूब भाई तरह कुछ शायरी अपनी भेज दीजिए, उर्दू की, पश्तो की शायरी हम आपसे सुन लेंगे, वो तो मैं पढ़ भी नहीं सकूंगा। वैसे अगर कोई भेजे आसान सा कोई पश्तो का तो मैं पश्तो में पढ़ दूंगा, मुझे मतलब नहीं समझ में आएगा लेकिन हो सकता है मैं पढ़ दूं, ठीक है ना। तो पश्तो का भी कुछ लिख कर भेजे अयूब लाला, मैं आपको बोलता है। चलो साई, अभी हम आपको एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब लेकर जा रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी पहले ब्रेक की जानिब जाएंगे। FM 24/7 365 वेलकम बैक। जी जनाब, अभी आपको एक ट्रैक की जानिब लेकर जा रहा हूं और ये ट्रैक बहुत सारे लोगों को डेडिकेट करना है। सबसे पहले तो समी की जानिब से हम हमारी प्यारी सी होने वाली भाभी को डेडिकेट करेंगे और उनके लिए ढेरों सलामती की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उसके साथ साथ सही रेहान अली कहता है कि सिंधी गाना सही कोई चलाए, तो रेहान भाई आपको और आपकी तमाम कचहरी को, हमारे प्यारे से अनवर पिताफी भाई आए हुए हैं और उनकी पूरी कचहरी को हम डेडिकेट करेंगे। और उसके साथ साथ सही हमारे जितना भी सिंधी बहन भाई सुनता है उन सबके लिए येल्लो पकड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कह सकते हो एन ए सुनियो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक, और एक बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी है। इस हल्ले गुल्ले में शामिल

वेलकम बैक कहेंगे सुनिए हूँ आप सबको जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कह सकते हो एन ए सुनियो म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ आपका और मेरा साथ है एक बजे तक और एक बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी है इस हल्ले गुल्ले में शामिल आराम के सीजन में उनको जो सबसे ज्यादा पसंद है वो चौसा और अनवर डॉल ज्यादा पसंद है बिल्कुल अच्छा वो आता भी बहुत कम मुद्दत के लिए और उसके साथ साथ

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कह सकते हो NA सुनियो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक, और एक बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी है। इस हल्ले गुल्ले में शामिल आराम के सीजन में उनको जो सबसे ज्यादा पसंद है वो चौसा और अनवर डॉल ज्यादा पसंद है। अच्छा, वो आता भी बहुत कम मुद्दत के लिए और उसके साथ साथ

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कह सकते हो एन ए सुनियो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और